क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी, रोमांटिक सॉन्ग वक्त। सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पर, वो फिक्र नाम है वक्त, नई खती 965 का।

हम जब सिमट के आँख और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर्रे तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्ते दो दोस्तों, ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है। और आप जानते हैं रफ़ी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Cosette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

और मेरा दिल ये और क्या होता है मेरे दिल को पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है हमारे यारो, हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इष्ट में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इष्ट में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये जों है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का सॉन्ग थे। आशा परीख सुनील लतीश ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में। और आपकी आंखों में क्या है, आपकी आंखों में क्या है, ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में, और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपके तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिन्हा तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौड मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिक लता जी का ये जोंग थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमान श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कंद का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसरत जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मोफी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है मोफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मौफी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मौफी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

0: चाहे बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

कहते कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है, जी लो तो जिंदगी खो दो, बस या तो यादें हैं। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिनके हो जाए बस वही खास है। हम आपको बहुत प्यार के साथ आपको हम यहाँ से स्वागत कर रही है सुनने वालों। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम अदाबर सो नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो? इस खूबसूरत दिवस में आप सब कैसे हो? बस यही आशा उम्मीद है कि आप जहां हो जैसे भी हो खुशहाल में हैं। आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत सारे प्यार मिले, बहुत सारे प्यार मिले, खुशियां मिले,

एक प्यार भरे दिन आप सबको पेश किया जाता है और ये सुंदर गीत से जो हम मिलकर सुनेंगे मुख्तार शाह जी की आवाज़ में।

सुंदर से फरमाए हैं मुख्तार शाह और उनके साथ भी दे रहे थे उनके साथी। और कहते हैं कि वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, जब होश ही नहीं जब जोश ही नहीं, किस काम की जवानी।

से पुकार कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी, साथ दे रही है लता जी के आन मिलो सजना। टाइटल सॉन्ग जो हमने आपने सुने आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सुनने वालों जो देनहाग शहर में है, हाँ देनहाग शहर में न्यू टाउन स्ट्रीट नंबर 25 पे है। दिल और फूल, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन लोगों के दिल और फूल से ज़्यादा, लोगों के दिल फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपके। जी हाँ, जैसे आपके दिल भी खूबसूरत है तो आपके दिन हमेशा, आपका दिन हमेशा फूलों की तरह भी बस खिलते रहें।

बार यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया के शेयर करेंगे हम, और मुख्तार शाह जी की आवाज़ में हम सुनेंगे जोश जवानी हाय रे हाय।

जी हाँ, जोश जवानी और हाय रे हाय, हम यहाँ से दुनिया के शेयर करें अराउंड द वर्ल्ड जो हमने उस फिल्म से सुने हैं। और ये गाने वाला है मुख्तार शाह।

और यहाँ से हम साथ में मिलकर सुनेंगे रफी जी की आवाज़ में कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।

प्यार भरी आवाज है कि फिरता हूँ, बेकरार और कहीं करती होगी वो आपका इंतजार। सुनो वालों, आपने सुने जाने पहचाने आवाज। फिल्म अभिमान के एक सुंदर सा गीत यहाँ से आपके लिए चला रही हूँ, और वो भी कोफर हुआ।

फिल्म अभिमान से निकाला गया है। सुन वालों, ये सुंदर सा गीत जो कफर किया जन यानी कि नाख सॉन्ग है। लाट जाओ लिख वंदाग स्ट्रालन, लाट जे लिख वंदाग स्ट्रालन, ओन बोविस हेल्प ये एर फेलन में। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपको एक शुभ दिन en we mogen weer genieten van een mooie dag.

जी हाँ सुनने वालों, हमने मिलकर सुने और वो भी रजिस पनवर और पल्लवी जी की आवाज में। कहते हैं कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट।

आज मैं आपको भोग आसक्ति कैसे छूटे। सज्जनों, जब भोग पदार्थ सामने आते हैं तब ना जाने क्यों हम विचलित यानी घबरा से हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं हम। अतः उस समय में हम क्या करें, क्या करें उस समय? तो सज्जनों, जिसने लाठी चलाना पहले ही सीख लिया है वही शत्रु के सामने आने पर उसे मुकाबला कर सकता है। परंतु शत्रु पहले ही सामने आ जाए और लाठी चलाना सीखा नहीं, वहां तो लाठी खानी ही पड़ेगी। प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सत्संग की बातों को तो आप जानते हैं, पर जब भोग सामने आते हैं तब उन बातों को भूल जाते हैं, वे बातें काम नहीं आती। फिर सज्जनों, जब तक काम नहीं पड़ता तब तक सब ही मित्र हैं, दोस्त हैं। काम पड़ने से ही पता लगता है कि कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है। सोना भी पीला दिखता है सज्जनों, और पीतल भी पीला दिखता है, परंतु आग में रखने पर सोना तो चमकता है और पीतल काला हो जाता है। प्यारे प्यारे प्रेमियों, एक सीखी हुई बात होती है और एक जानी हुई बात होती है। जानी हुई बात वास्तविक होती है, जो कभी इधर उधर नहीं होती, और सीखी हुई बात बुद्धि तक ही रहती है, स्वयं तक नहीं पहुंचती। परंतु जानी हुई बात स्वयं तक पहुंचती है। जब तक कोई बात स्वयं तक नहीं पहुंचती तब तक वो जैसे व्यवहार में आनी चाहिए वैसे वो नहीं आती है। सज्जनों, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है उसको सीखी हुई बातों में संतोष नहीं होता। संतोष न होने से उसके द्वारा खोज होती है कि वास्तव में क्या बात है। खोज करते करते उसको तत्व का अनुभव हो जाता है। एक सत्संग होता है और एक कथा वार्ता, पुस्तकों का विवेचन आदि होता है। आपको तो शायद मालूम होगा कथा व्याख्या आदि की बातें बहुत जगह मिलती है, पर अनुभवी भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग कम जगह मिलता है। सज्जनों, बहुत कम जगह मिलता है। अनुभवी महापुरुष पहले यानी सत्य त्रेता द्वापर में भी कम थे, आज तो और भी कम हो गए हैं, और भी कम है। ढोंग रचाने वाले बहुत हैं, बहुत। उन लोगों से बच के रहिए। आज तो विद्यार्थी भी ठीक तरह से शास्त्र का अध्ययन नहीं करते और महात्मा बन गए हैं, कोड़ी परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। सज्जनों, पूछे तो बता नहीं सकते हैं, जो पढ़ा है वो भी नहीं बता सकते। फिर वास्तविक ज्ञान तो बहुत दूर रहा। सब काफी है जो ढोंग रचा रहे हैं। पैसा कमाने का मतलब है, पैसा कमाने का मतलब ठीक तरह से पतलून धोती नहीं कस पा रहे हैं और महात्मा बन गए। ऐसे लोग आज बहुत हैं, बहुत हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप वास्तविक तत्व को समझें, कोरी पढ़ाई न करें। जब भोग सामने आते हैं तब सब
सुनी सुनाई बातें रद्दी हो जाती हैं सज्जनों, रद्दी हो जाती है। एक कहानी है, एक पंडित थे। पंडित उसे कहते हैं जो भी कोई पढ़ लिख कर एक विशेष पदवी प्राप्त कर लेता है, जहां पर उनको पंडित कहलाने के जायज है। मगर आज के जमाने में तो पंडित का अर्थ ही लोग गलत समझ बैठे हैं। फिलहाल तो एक पंडित थे, वे रोज रात्रि में कथा किया करते थे। उन्होंने एक बिल्ली को पाल कर सिखा रखा था। वो बिल्ली को बैठा कर उसके सिर थोड़ी मिट्टी रख कर दीपक रख देते थे और उस दीपक के प्रकाश में कथा बाँचते। अगर कोई कहता कि हमारा मन ठीक नहीं है तो वे कहते हैं, अरे ये बिल्ली ही ठीक है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है, तुम्हारी क्या बात है। एक आदमी ने विचार किया कि देखें बिल्ली कैसे चुपचाप बैठती है। वो दूसरे दिन अपने साथ एक चूहा को लेकर आया। जब पंडित जी कथा यानी जब पंडित जी की कथा चल रही थी, उस समय उस आदमी ने चूहे को बिल्ली के सामने छोड़ दिया। सज्जनों, चूहे पर दृष्टि पड़ते ही बिल्ली उस पर झपट पड़ी और दीपक गिर गया। ये ही दशा आदमियों की होती है, आज के मनुष्यों का भी। बातें सुनते समय तो चुपचाप बैठे रहते हैं, पर जब भोग पदार्थ सामने आ जाए तो फिर वश की बात नहीं रहती। कारण कि भीतर में रुपयों आदि का आकर्षण है, यानी युद्ध है, खिंचाव है। इसीलिए रुपये सामने आने पर मुश्किल हो जाती है। भोगों का ये आकर्षण पहले नहीं था, ये बात नहीं है। खिंचाव तो पहले से ही था, पर वो दबा हुआ था। तांबे के कढ़े के ऊपर सोने की पॉलिश कर दी जाए। ध्यान करना, तांबे के कढ़ाई के ऊपर सोने की पॉलिश कर दी जाए तो वो कढ़ा सोने का ही दिखता है। इसी तरह सीखी हुई बातें पॉलिश की तरह होती है, परंतु जानी हुई अनुभव की हुई बात ठोस होती है, मजबूत होती है, पक्का होती है। जिसके भीतर में स्वयं का अनुभव होता है, उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए वो विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। सज्जनों, नहीं डगमगाएगा वो, हर परिस्थिति में ज्यों का त्यों रहता है। परमात्मा की प्राप्ति को लोग कठिन मानते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है सज्जनों, बल्कि भोग आसक्ति का त्याग कठिन है। ये कठिन है सज्जनों। ख्याल कीजिए अपने आप में, किस तरह का व्यक्ति आप हो, कैसे आप भोग आसक्ति से काम लेते हो, और ध्यान प्रार्थना में कैसे हो आप। ध्यान करने को बैठते हो, प्रार्थना करते हो और कुछ दुनिया के मतलब की बात आपके कान में आ गई तो आप बैठे ही रह जाते हो, प्रार्थना करते ही रहते हो, या वहां से उठकर जुड़ते ही उस बात में शामिल हो जाते हो जहां पर भोग पदार्थ की बात किया जाता है। सज्जनों, सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप।

मैं आपका सेवक गोपाल परदेशी बाबा। मित्रों, मनुष्य दुखी और अशांत हुआ क्यों? कुछ ऐसा कर्म किए जो अच्छे न होने के कारण विकर्म हो गए। सज्जनों, उन विकर्मों से मनुष्य के संस्कार भी अशुद्ध हो गए, जिसके परिणाम में मनुष्य दुख पूर्वक जन्म मरण के चक्कर में अथवा क्लेशकारी कर्म बंधन के चक्कर में फंसकर दुख का भागी हुआ। सज्जनों, तो यदि अब हम दुख से छुटकारा तथा पूर्ण सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है कि एक तो हमारे पिछले विकर्म भस्म हो जाए, ताकि उन रहे हुए विकर्मों का दुख अथवा दंड न भोगना पड़े, और दूसरे भविष्य के लिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए ताकि सुख प्राप्त हो सके। तो भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, पिछले कर्मों को भस्म करने के लिए तथा वर्तमान और भविष्य में शुद्ध कर्म करने योग्य बनने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म अथवा शुभ कर्म का ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान आपको होना चाहिए। सज्जनों, ज्ञान के बिना न पिछले विकर्म विनष्ट हो सकते हैं और न आगे के लिए ही मनुष्य पवित्र जीवी बन सकता है। नहीं हो पाएगा मित्रों, इसलिए उक्ति यानी उपाय है कि ज्ञान से सदगति होती है, तो ज्ञान अग्नि में पिछले भी कर्म भी भस्म हो जाते हैं और ज्ञान अमृत से आत्मा पवित्र हो जाने के कारण विकर्मी विकारी नहीं होती। विकारी कर्म बंधनों के समाप्त हो जाने पर मनुष्य आत्मा कर्म अतीत अवस्था को प्राप्त करती है, यानी बुरे कर्मों से छुटकारा अवस्था को प्राप्त करती है, जो ही दुख सुख से न्यारे अवस्था है। मित्रों, उसके पश्चात आत्मा फिर जब शरीर धारण करती है तो शुभ संस्कार होने के कारण जन्म जन्मांतर तक सुख शांति का उपभोग करती है। मित्रों, इसलिए मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य अथवा विकारी से निर्विकारी बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो अमृतवाणी द्वारा आप तक

अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य को कौन सा ज्ञान मिले जिससे उसके कर्म विकर्म बन जाने के कारण वो आज दुखी और अशांत है। भाई बहनों, विचार करने पर मालूम होगा कि कर्म विकर्म अकर्म का ज्ञान भी मुख्यतः तीन बातों को न जानने के कारण है। एक तो शरीर धारण करते करते मनुष्य आत्मा समय अंतर में अपने को अविनाशी चेतन आत्मा निश्चय करने की अपेक्षा पांच तत्वों की विनाशी देह समझ बैठी और देह के विनाशी को अपना यानी अविनाशी संबंधी मान बैठी, जिसके कारण उसके कर्म काम क्रोध लोभ आदि विकारों के साथ मिल गई। सज्जनों, इसी से उसके कर्म भी विकर्म बनने लगे। और दूसरे, आत्मा अपने को देह मानने के साथ साथ अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा जो सुख शक्ति आनंद का दाता है याद भूला बैठे। आप भूल गए हैं परमात्मा, अशुद्ध निश्चय में स्थित स्वरूप विस्मृत आत्मा अकर्तव्य में तत्पर हो गई और कर्तव्यों से विमुख हुई। मित्रों, तीसरी बात, अपने को देह निश्चय करने के साथ साथ मनुष्य आत्मा देह के इस सागर जगत को ही अपना देश मान बैठी और निज अविनाशी सत्ता के अविनाशी धाम को भुला बैठी। भूल गए हो, इसीलिए आप दुखी हो गए हो, जिस कारण ही पांच तत्वों की माया में आसक्त अथवा कामना युक्त होने से वो विकारी पुजारी और दुखी हुई। मित्रों, दुखी हो गए आप क्योंकि संसार को आप अपना ही मान बैठे हो। इन तीनों कारणों के आधार पर आत्मा अपने को साक्षी दृष्टा अभिनेता और अविनाशी सत्ता निश्चय न करने से आत्मा ने जो भी कर्म किए वे उसके स्वधर्म के विपरीत अर्थात विकर्म बन गए और विकर्मों के परिणाम में मनुष्य को दुख तथा अशांति भी हुई और उसके संकल्प संस्कार यानी चेतन आत्मा स्वयं भी अशुद्ध हो गई। मित्रों, और ये सब आप ही की गलत विचार से, अशुद्ध संस्कार होने से मनुष्य का जन्म भी विकारी और दुखदायी हुआ और इस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन में फंसकर दुख के चक्कर में जकड़ गया। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि शरीर से न्यारी मैं आत्मा कौन हूं और दूसरी बात कहां से आई हूं, तीसरी बात मेरे अविनाशी पिता परमात्मा के अविनाशी नाम रूप परम धाम और दिव्य कर्म इत्यादि का वास्तविक परिचय क्या है। इस ज्ञान को धारण कर परमात्मा के गुणों का मनन करने से मनुष्य दिव्य गुण संपन्न और विकारी कर्मों से अतीत हो यानी बुरे कर्मों से छुटकारा पाकर सदगति को अथवा सुख शांति को प्राप्त कर सकेगा। मगर आपको तो ये ज्ञान को धारण करना ही चाहिए। तो दुख का कारण यही है कि हम विनाशी चीज को अविनाशी मान बैठे हैं और अविनाशी को भूल गए हैं। परमपिता परमात्मा अविनाशी है। ये दुनिया का जितने ही वस्तु आपके पास है, ये सब खिलौने हैं, खेलने के लिए, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब विनाशी है।
क्षण भंगुर है मित्रों, और इसी को हम अपना मान बैठे हैं। तो यही है भूल आपकी और यही है कारण दुख की। जानते हुए भी आप इसमें फंसे हुए हो, क्योंकि सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

तो सज्जनों, ईर्ष्या करने वाला अपने ही रक्त को ईंधन की तरह यानी जलाने वाले समान की तरह जलाता है, वो स्वयं को ही सुखाता है, अपना ही दम खुश्क करता है, अपना ही रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, अपने ही जीवन को बोझिल करता है। मित्रों, ईर्ष्यालु अपने ही खुशी को भूसे के भाव सुलगाता है, सूखा हुआ घास के तरह सुलगा देता है। ईर्ष्या तो टीबी का बीमारी है, जानते हैं ना, टीबी की बीमारी तपेदिक है, जिसे मनुष्य की हरारत यानी टेम्परेचर सदा ही बनी रहती है और व्यक्ति खाए खाए खोंकते रहते हैं, खांसते रहता है। सज्जनों, द्वेष तो दावानल यानी जंगल की आग की तरह है, जो झाड़ी झाकर के साथ अच्छे अच्छे पेड़ों को भी नष्ट कर देता है। साथ ही द्वेष भूकंप का रूप लेता है, कभी बॉयलर यानी गर्म करने वाले मशीन के फटने का, कभी राइफल की गोली यानी बंदूक की गोली का, और कभी हाथ गोले यानी हांद खरनाथ का। ये काम कर बैठता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु मनुष्य। ईर्ष्या और द्वेष से भरे व्यक्ति की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, क्योंकि वो तो कभी भी फट सकता है, ना घर के ना घाट के है ऐसे लोग। ये लोग इंसान में गिनती नहीं है, क्षमा करना, आप ऐसे हो तो फिर आप भगवान की तरफ नहीं है, आप तो शैतान की ओर है। मित्रों, तो मन का सच्चा मीत को इस संसार में, मन का सच्चा मीत भी कोई मानव थोड़े ही है, मनुष्य थोड़े ही है, ऐसे ही सभी दम दला से देते हैं। मित्रों, सभी दम दला से देते हैं, हाथ में 5-10 रुपये का नोट लेकर सिर पर घुमाकर वारी या कुर्बान जाते हैं, है ना। सच्चे योग के बिना कौन निस्वार्थी हो सकता है, कौन। सभी आशाएं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सभी का कुछ तकाजा है, कोई मांग है। मित्रों, अगर कोई कुछ देता है तो कल लेता भी है, कल लेगा भी, लिए बिना ना स्वयं मुक्त होता है, ना हमारा छुटकारा होने देता है। समय पर कोई सच्चा योगी ही साथ देता है मित्रों, और वो भी अपने सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुसार। सच्चा मीत तो एक परमात्मा ही है, सच्चे अर्थ में एक वही दाता है जो कभी लेता नहीं है मित्रों, हमेशा ही देता ही रहता है। वही सर्वशक्तिमान भी है, दयालु और कृपालु भी, कल्याणकारी भी, परम हितैषी भी। विश्वास तो करो मित्रों, उसको छोड़कर सृष्टि के मनुष्य एकजुट होकर भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, सब मिल करके भी नहीं कर सकता है कल्याण। हाँ, मार देते हैं बंदूक से, जैसे आजकल ओरलोक वगैरह हुआ थे ना, अरे आप तो देखते हो टीवी पे, और हर एक टीवी पे भी देखते हो, जिसके अपने दोनों हाथ हथकड़ियों में और पांव संकलों में हो, वो दूसरों को क्या छुड़ाएगा, क्या छुड़ाएगा। मित्रों, जिसके मन में अपने और पराये का भेद है, और जो अपने ही सर्व स्वार्थी से ऊपर नहीं उठा, तथा जिसकी अपनी ही कुछ इच्छाएं और कामनाएं रही हुई हो, या जिसे अपने लिए ही कोई मान शान पद पदार्थ सफलता सहारा चाहिए, वो दूर
दूसरों का स्थाई एवं सच्चा मित्र कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मित्रों, मनुष्य को हम अपना मित्र मानकर मन की कोई बात बताते हैं तो वो उसका भी लाभ लेता है, लाभ लेता है। उसे हम अपनी किसी कमजोरी की बात कहते हैं तो वो हमारी उस कमजोरी का भी नाजायज फायदा लेता है। इसलिए अपने बात अपने मन में रखो, भगवान से बोलो, मित्रों हम उससे कुछ राय सलाह करते हैं इंसान से तो वो हमें अपने अधीन मानकर हमें चलाने लगता है, नचाने लगता है अपने इशारों पर। कलयुग की इस काल में मित्रों, जबकि इंसान में ना गंभीरता है, ना सामाने की शक्ति, ना हित कामना, ना मित्रता को निभाना, तब भी यदि हम किसी मनुष्य को सच्चा मित मानकर चलते रहें तो अवश्य ही हमारी बुद्धि की यह कमी है। विश्वास करो मगर मित्रों, संभल के। दो, एक भगवान ही सहारा है, भगवान ही सहारा है। जब सभी छोड़ जाते हैं मित्रों, सब छोड़ जाते हैं, तब भी एक वही आश्रय रह जाता है, परमात्मा। मनुष्य से मांगना तो अपनी इज्जत गंवाना अथवा अपनी पगड़ी उसके पांव पर रखना है। मित्रों, मैं ये बात बतला रहा हूं मगर फिर भी कभी कभी अवसर ऐसा आ जाता है कि मजबूरी एक बहुत भयानक राक्षस है। मजबूरी में लोग कभी कभी गधे को बाप बोलते हैं, बोलना पड़ता है। क्या करें, मनुष्य को अपने जीवन में ये तो स्पष्ट रूप से समझ ही लेना चाहिए कि अगर कोई सच्चा दोस्त या साथी है या कोई मन का मीत है तो वो एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही।

अतः मन का नाता उस ही से जोड़ना चाहिए। आज लोग मन को कहीं भी स्थिर करने का अभ्यास करते हैं और उसी को योग कहते हैं, उसी को योग कहते हैं मित्रों। परंतु सच्चे अर्थ में योग वो है जिसकी आधार भूमि में ये भाव समाया हो कि एक परमात्मा ही मन का सच्चा मीत है, प्रियतम है और समर्थ सहारा है, और किसी से भी वैर भाव द्वेष या दुश्मनी करना मूर्खता है, मूर्खता है, भ्रष्टता है मित्रों, निकृष्टता, बहुत खराब है। और दलदल में धसने के समान है मित्रों ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुटनाई, इस सब क्यों कर रहे हो? जीवन भर पूजा पाठ करते आ रहे हो, मंदिर जाते हो, भजन सुनते हो, भजन गाते हो, फिर भी मन में द्वेष, ईर्ष्या, कुटिलता, कायरपन इत्यादि इत्यादि। अरे तो तुम तो भगवान के भक्त हुए या किसी और चीज का? ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो राक्षसी आदत है, शैतानी चीज है। हे तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो प्यारे प्यारे भाई बहनों, पहचानो मित्रों। मन, वचन और कर्म की पवित्रता में ही जीवन का संपूर्ण आनंद है। पवित्रता के बिना श्रेष्ठ चरित्र की कल्पना व्यर्थ है। इसीलिए मन वचन से शुद्ध रहो, शुद्ध रहो, यही तुम्हें काम आएगा मरने के बाद सज्जनों। और जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक संसारिक सुख की इच्छा कभी ना करे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, मगर आप तो दरिद्र की तरह ग्रीडी हैं, आप हाही की तरह सब कुछ अपना रहे हो और सब कुछ छूट जाएगा, आनंद नहीं ले पा रहे हो, बीमार हो गए हो, हर एक तरह का बीमारी आपको है। अरे तो का फायदा हुआ? पैसा कसल है, धन दौलत कसल है आपको, है मगर आनंद नहीं ले पा रहे हो। अरे तो का भय भैयो, उसी पैसा से सेवा करो। लक्ष्मी सेवा करती है, लक्ष्मी विष्णु की सेवा करे तो ठीक है, अगर उल्टा काम हो जाए, लक्ष्मी आपकी सेवा करे ठीक है, आप लक्ष्मी की सेवा करेंगे तो गड़बड़ तोरी। जब पैसा आपकी सेवा करें, सेवा करवा रहे हो, दूसरों की सेवा करे हो, बहुत ठीक है। आप पैसा की सेवा बैठकर उसी का जाप करेंगे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। वही आप कर रहे हो, पैसा पैसा पैसा पैसा, पराया माल अपना जो भी ढंग से कमा रहे हो, आने दो आने दो, है उम्र बीतत जाल थे, पैसवा कमती है, भी और बना ले और बना ले। ए, कब रुकी हो? कब रुकना है? कब इन सब चीजों का आनंद लेंगे आप? मरने के समय या मरने के बाद? मुझे पता है काफी लोग यहाँ खूब पैसा कमा कमा कर, अरे खत्म कर लिए हैं सब कुछ। मित्रों ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। जीवन का दूसरा नाम समझौता है, समझौता भी किया करो जीवन में। आज मैंने आपको दोस्ती और दुश्मनी के बारे में दूसरी भाग यानी आखिरी भाग बतलाया। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

हर नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो, उठो, तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम, नमस्ते। धर्म कर्म फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आप सभी को फाहन के टीम की ओर से एक शुभ दिन प्रगट हो।

आरती कुंज बिहारी की अब की बार सुबह सुबह ले शिव का नाम, सही बात है दोस्तों सुनने वालों, अगर आप शिव का नाम सुबह सुबह लेंगे सुबह पर तो आपका दिन कितना अच्छा से कट जाएगा।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप रात्रि को आराम से सोया या कभी कभी हो जाता है कि नींद नहीं आते, फिर भी जब पलंग से आप अपन पाँव रखा फिर जमीन पर, तो शिव का नाम हमेशा ले लेना, आपका दिन सही से कट जाएगा। अब की बार बंदे किस पर करे गुमान, तू है तो दो दिन का मेहमान।

बात तो पूरे सही है, किस पर करे गुमान तू, तू तो है दो दिन का मेहमान। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। फाहनुष्ठान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम धर्म कर्म आप सुन रहे। अगर आप ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाह रहे तो तार कीजिए 0 तक 3 6 5 2 8 8 फीड सीफ पर।

सुबह सुबह ले गणपति नाम। गणपति बाबा आपका रक्षा जरूर करेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको उनका नाम लेना है। हरिओम सरन जी के आवाज में एक दूसरा भजन आप सुनेंगे।

श्री राधे गोविंद राम मन भजले हर का हरि का प्यारा नाम है। दोस्तों एक कवाली प्रोग्राम में चलेगा सभी मुस्लिम बहन और भाइयों के लिए स्पेशल।

का हैप्पी स्टेशन 500 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात करते, कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होतों के फूल जो है प्यारी प्यारी

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जुहन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुने हैं अभी का हैप्पी सीजन 5 रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जबडो होती हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुनने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तू आईना, कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

0: फाहन रेडियो पे, यहाँ से आप और मैं चुनू लाइव आपके लिए पेश किया जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे प्यार आप सभी को यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है।
1: धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। बदनसीब इंसानों का ये काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहाँ जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही। ये कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है। उसके बूढ़े माँ बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए गए और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर इस आंधी से निकला। इंसान की इस हैवानियत को देखकर उसका दिमाग टकरा गया, उसका विश्वास हिल गया। भगवान की दुनिया में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों।

0: बीड़ी की गोली में हजार मिलती थी। अच्छा, गांव में बारात आती थी तब ये नजारा किस किस ने देखा है, थी तब ये नजारा किस किस ने देखा है दोस्तों, देखा है। मैं स्कूल जाते समय एक रुपया मिलता था, कसम से आज हजारों भी मिल जाए तो भी वो खुशी चेहरे पर नहीं आती। चवन्नी की चाहे चार मिलती थी, खुशियां संतरी की गोली में हजार मिलती थी। अच्छा, गांव में बारात आती थी तब ये नजारा किस किस ने देखा है दोस्तों। इसके आगे लग्जरी गाड़ी भी फेल थी, एक यही है जिसके सहारे हमने चलना सीखा। इसका नाम पता है क्या किसी को? पहले एक रुपए में अनाज मिलता था इसलिए अनाज छापा था, अब एक रुपए में कुछ नहीं मिलता इसलिए ठेंगा छापा है। कितने पैसों से आप लोगों के बचपनों का शुरुआत हुआ है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपके शहर में एक रुपए की कितनी आती थी? किस किस को याद है ये चूरन वाली लॉटरी? ओह, वो भी क्या दिन थे यार। सच में सर्दियों की धूप में जब माँ रजाई में धागे डालती थी तब उस बिछाई हुई रजाई पर ऐसे मस्ती करने का अपना ही मजा था। दोस्तों, उस समय सहजता थी, सादगी थी, दोस्ती थी। तब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, तब जिंदगी असली थी। बचपन में मास्टर जी द्वारा भेजी गई कमांडो फोर्स जो ना कोई बातचीत करती थी ना ही कोई समझौता। कौन कौन बचपन में अपने पापा की कमर ऐसे दबाता था दोस्तों, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। स्टेपलाइजर में लाल बत्ती जलते ही टीवी की ओर दौड़ तो सबने लगाई होगी, क्या आपको याद है? गर्मी की छुट्टियों में जब दोपहर में बाहर ना निकलने की हिदायत मिलती थी और जब सब सो जाते थे तो चुपके से बाहर आ जाते थे, कौन कौन ऐसा करता था? जब मोबाइल नहीं था तब ऐसे टाइम पास करती थी लड़कियां। किस किस ने खेला है ये खेल दोस्तों? इतनी चाहत तो लाखों रुपए पाने की भी नहीं होती जितनी बचपन की तस्वीर देखकर बचपन में जाने की होती है। वो बचपन था जब शामें भी हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधे रात ही होती है। याद आते हैं वो स्कूल के यार जो साथ मार खाने को भी रहते थे हमेशा तैयार। होमवर्क ना कर पाने का डर भी खुशी में बदल जाता था जब पता लगता था आज किसी दोस्त ने भी होमवर्क नहीं किया है। तो दोस्तों, मेरा नाम असलम है और मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में।
1: हाँ हाँ, यहाँ से हमें कुछ पुराने यादें ताज़ा किया जाता है और एक गीत आपके लिए यहाँ से खोज कर लाई हूँ, इसका कुछ अलग सा धुन है, आप जरूर से सुने।
2: क्यों पंडित जी महाराज, दक्षिणा मिल गई ना आखिर? वाह, आजकल भगवान भी ऐसे पापियों से खुश होते हैं।
3: राम कहे
2: पापी, पापी तो तुम हो,
3: पेट जी पर तो भगवान की बड़ी दया है।
2: वाह पंडित जी, लो चार पेटे
3: कल्याण हो।
2: अरे बाबू जी, आजकल भगवान भी खुशामद से बहुत खुश रहा है, तो वहीं तो सारी की सारी लक्ष्मी सेठ जी की तरफ भेजा थी।
4: हाँ भैया ठीक कहते हो, भगवान पहले की तरह नहीं रहा जो गरीबों की सुना करता था, आजकल तो भगवान भी बदल गया है।
5: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया, भगवान कितना बदल गया, भगवान
6: आई बोले शैतान।

जो अपनो ठिकानो हे भगवान मारो थारो प्रेम पुराणो मारो थारो प्रेम पुराणो हम है थैले तुम हो खजानो भरते रहियो दाज की झोली देते रहियो दान तुम्हारी जय जय हो भगवान।

0: न डाले सेठों का हो मेहमान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान।
1: क्या भगवान, क्या भगवान,
0: कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया
1: भगवान, क्या भगवान।
2: जी हाँ मेरे सुनने वालों, ऐसा ऐसा गीत भी है जो फिल्मों में दिखलाया गया है और रिप्ले यानी कि प्लेबैक किया गया है।
3: मगर
2: आपसे बता दें, इस फिल्म का नाम है रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म। निखंती 55 तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है मदन मोहन के निर्देशन में। कि देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गए भगवान, अरे इंसान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। ये प्रदीप कुमार जी गाए हैं और इस एपिसोड यानी तेहो फरखस्तेल्द कि देख तेरे इंस भगवान की हालत क्या हो गए इंसान। वक्त वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। हाँ जी, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।
4: आप नदी में जाकर कितना भी पाप धोए, लेकिन पीने के पाइपलाइन से वो वापस आपके ही घर में आएगा।

0: आपने सुना है कि घर के दौलत है घर वाली। हाँ, जैसे कहते हैं कि परिवार शनिवार शनिवार रविवार बुधवार सभी वार वार है, पर ये वार भी ठीक है। परिवार परिवार परिवार भी बहुत है और परिवार को संभालना ही आवश्यक है।
1: दो पैसे पर ले लेना, दो पैसे परसो, दो पैसे नरसो, दो पैसे तरसो, और फिर कल फिर परसो फिर नरसो, इसी तरह तुम्हारे पैसे आधा हो जाएंगे।
2: नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत, तुम चीजें ले लो, पैसों वैसों की फिक्र ना करो।
3: एक तो

0: हाँ जी पहचानो ये कौन है तो मैं बता देती हूँ, आप रोज़ सुनते हो, फिर भी यहाँ से एक बार फिर बता देती हूँ, आप और मैं जुड़ी हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये प्रोग्राम पेश किया जाता है आप के लिए।
1: बारिश मिले नौकरी बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम।

0: वो सॉन्ग मोहम्मद रफी जी की आवाज में जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, वाओ वाओ वाओ, आपके लिए पेश किया गया। फिल्म का नाम है नौटंकी।
1: सुपर सोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत करने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चिमनी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़े हैं। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों को पहुंचने में और जवाब वापस आने में महीनों तक का इंतजार किया है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे, जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गोदरेज शॉप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई, जिन्होंने गुड़ की चाय पी, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी से या फिर कोयले से दांत साफ किए। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे रेडियो शो सुनी है। तो दोस्तों, आप लोग को यह समय अच्छा लगता है कि वह समय ठीक था? आप

फिल्म का नाम जौहर महमूद, जौहर महमूद इन गोवा। और वाकई में ये दो दोस्तों जौहर और महमूद इस फिल्म में, और ये गीत भी एक्ट की है। और जैसे आपने सुने है कि ये दो दीवाने दिल के चले हैं मिलके ससुराल, इस फिल्म के अनुसार ससुराल इनका जेल है, इसी अनुसार पे ये गीत इतने धुन इतने अच्छे ढंग से बना दी है। आप इसे शादी विवाह में भी इस्तेमाल कर सके हैं, लाभ ला सकते हैं। आपको भी बहुत सारा प्यार भेजा जाता है आपी का फाउन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से। और कहते हैं, हाँ और क्या कहते हैं, कि वक्त ने सब कुछ सिखाया पर, वक्त ने सब कुछ सिखाया पर सही वक्त पर नहीं सिखाया।

ये झुकी झुकी निगाहें तेरी, सही बात सही वक्त पर की जाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है, है ना? गीता में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना ऐ मेरे दोस्त, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, बल्कि आप नहीं, आपका वक्त कमज़ोर है, बल्कि आप नहीं, आप बहुत पावरफुल है। मेरी पसंद भी लाजवाब है जैसे आप, हाँ हाँ मेरी पसंद भी लाजवाब है जैसे आप, यकीन नहीं तो खुद को देख लो, हाँ हाँ अपने आप को देख लो कि आपके बराबर कोई और नहीं है। याद रखना किसी के लिए रोने से कोई अपना नहीं होता, ये ज़रूर भी है। मुझे कोई कितना भी हर्ट कर ले, मुझे कोई कितना भी हर्ट कर ले, लास्ट में यही सोच के चुप हो जाता हूँ कि मेरी ही किस्मत खराब तो नहीं। नहीं नहीं, खराब किसी की किस्मत नहीं, खराब किसी की किस्मत नहीं। क्यों झूठे सपने तुम किसी को दिखाते हो, क्यों झूठे सपने तुम किसी को दिखाते हो,

क्यों झूठे सपने तुम किसी को दिखाते हो, तोड़ना ही है दिल जब तोड़ना ही है जब दिल, तो क्यों करीब किसी को आते हो और लाते हो।

केसर जी के आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है फिल्म का नाम। हाँ हाँ, आपने सही बोला, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर वही मशहूर फिल्म जो 3 घंटे के है। पहला तो है बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, जिसे हम देखकर और बहुत बहुत बहुत पछताते हैं। ऐसा होता है जब हम नौजवान होते हैं तो हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं कि अब मैं जल्दी से वहाँ उस मोड़ पर पहुँच जाऊँ, उस तरक्की पहुँच जाऊँ। और जबकि हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम मोड़ के पीछे तकते हैं, देखते हैं कि कितना अच्छा था हमारा बचपन, हमारा जवानी, पर वो लौट कर नहीं आते। और कहते हैं कि जवानी में जोश होता है और बुढ़ापे में होश होता है, ये हकीकत है। जोश के आगे होश खो जाते हैं और होश जब आते हैं तो वो जोश जो रहते हैं ना वो बीत जाते हैं।

आपके लिए पेश किया गया है रिमिक्स हनुमान चालीसा। सदा स्वस्थ रहने के 12 जरूरी नियम। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो जरूर से आप इसे सुने और सुनकर इसे प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारे, ये अपने आप का फायदा होगा। सदा स्वस्थ रहने के 12 जरूरी यानी कुछ जरूरी नियम, जैसे पहला, खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्र आसन में बैठना। रात के सोने से 30 मिनट पहले दूध पिए अगर आपको एलर्जी नहीं हो तो। रात में दही ना खाए। अंतर होता है दूध में और दही में, तो कहते हैं कि रात को सोने से 30 मिनट पहले दूध पिए और रात में दही ना खाए। रात में फल खाने से बचे। रात में फल खाने से बचे। नमक, हाँ जी, नमक और चीनी जो बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर सुनिए, नमक और चीनी कम खाए। भोजन के बाद एक

तली भुनी चीजें कम खाए, तली भुजे चीजें कम खाए, यानी कि तले यानी कि छनवा जैसे बारा फलौड़ी ये सब चीजें कम खाए। एंड बपाल द ओली सोर्त दात मोती ओगदान फरमेदन, बपाल द सोर्त ओली कुंत फरमेदन एंड ओक मेल सोर्त कुंत फरमेदन, दैट इज ओक नीट गुड फॉर हेट गेसोंदहेद। En wat wel belangrijk is, roodse soep te helne ki adete dale. Elke ochtend of de hele dag ergens dat je een moment kunt krijgen om te gaan wandelen, een beetje lopen, is helemaal goed voor je gezondheid. और एक बात और है कि मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना ना खाए। हमारा आदत तो एक जैसे से हो गए है कि टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए खाने खाते वक्त, पर ये अलाउड नहीं है। यानी कि मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना ना खाए।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के यहाँ पर आपके लिए पेश किया गया है। भोजन सूत्र, भोजन सूत्र। वाह वाह करते हुए जीने के लिए, वाह वाह करते हुए जीने के लिए, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। रोटी को आधा कर सब्जी को दुगना, रोटी को आधा कर सब्जी को दुगना, पानी को तिगुना करे हंसना चौगुना करे। कम खाए स्वास्थ्य पाए उम्र बढ़ाए, ज्यादा खाए रोग पाए और जल्दी। वाह वाह करते हुए जीने के लिए, एक बार खाए जोगी, दो बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी।

Chiu DJ Remix. पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र का जन्म वरम वर्त अनसों खबोर इन अखसेन। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है। पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है। पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है। पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है। लेकिन अगर आप पर पिछले जन्म का कर्ज नहीं है तो बेटा नहीं बेटी पैदा होगी और कन्यादान करने पर आपको महापुण्य मिलेगा। कन्यादान करने पर आपको महापुण्य मिलता है। यही वजह होता है कि हमारे घर में पुत्र और पुत्री क्यों जन्म लेता है।

कभी कभी जो हमारे साथ हो रहा होता है वो उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ समझ आता है कि शायद ये भी अच्छे के लिए ही हुआ था। जिंदगी की हर चोट, हर मोड़, हर रुकावट किसी बड़ी भलाई का रास्ता खोल रही होती है। उस पल सब्र और यकीन बनाए रखना ही असली ताकत होता है।

अवश्य हर हर महादेव। श्रावण शिवरात्रि, श्रावण शिवरात्रि स्पेशल, श्रावण मास जो साल में एक बार आता है, हर साल जो श्रावण मास आता है उसी अनुसार गायक जो है नए नए गीत भजन डीजे रिमिक्स बनाते हैं, उनमें से ये एक भी है। बम बम भोले महादेव मैशअप

हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl और मेल ऑन्स ऑफ info@

0: जी हाँ मेरे दोस्तों, नदीम खान जी की आवाज़ में हमसे सुने, हम सब ने सुने कि किसी से मुझे प्यार हो। यस्त मनेर ओम वातर तर द्रिंकन ड्रिंक वातर तर वेल उसित वाटर ड्रिंकन terwijl u staat kan schadelijk zijn voor uw gewrichten en nieren. Lang drink langzaam, langzaam drinken. Niet doorslokken. Langzaam drinken geeft het lichaam de tijd om het water goed op te nemen. Lauw water op een lege maag in de ochtend. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en versnelt het stofwisseling. Hou voldoende tijd voor en na de maaltijd. Drink niet te veel water direct na het eten, maar drink het pas na 30 minuten. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink 8 tot 10 glazen water langzaam verspreid over de dag.
1: आज मैंने कुछ सोचा है।
2: कभी कभी ये काम भी करना चाहिए।
1: आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
2: मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है।
1: अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
2: और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है।
1: ये फाइनल है यार।
2: फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना
1: यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे
2: यार।
1: वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
2: मैं क्यों करूं?
1: अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
2: देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
1: जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
2: घर तो तेरा होगा।
1: एक बीवी होगी,
2: तेरी होगी।
1: 7-8 बच्चे होंगे,
2: तेरे होंगे।
1: पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
2: यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
1: समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा दे। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बचा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
2: साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
1: सच?
3: अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
3: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
3: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
3: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कंबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
3: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना,
4: फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
3: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
4: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए।
5: Dit is geweldig. Diabetes hield me nooit tegen. Het zorgde alleen voor meer zorgen. Maar Omnipod 5 werkt samen met mijn sensor om automatisch insuline toe te dienen. Wat helpt om mijn waarde binnen bereik te houden. En het is waterbestendig. We gaan ervoor. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipod.
4: Je juwe en sharaab ki aadat to do din mein chhoot jayegi.
3: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
4: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
3: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
4: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
3: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
4: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
4: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं।
4: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
6: कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। ये कर रहा हूं भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
7: अरे भाई ये सुसाइड क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
8: वो
9: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
6: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।
7: अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
6: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुकियो, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
3: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो?
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया, देखो।
6: मेरा दिल भर चुका।
3: देखा, देखा तुमने?
4: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
3: क्योंकि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर से दोस्त नहीं देखा। जो अरे
6: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
7: कैसी मुसीबतें आएंगी?
6: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail,
10: बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
9: अरे मौसी हाँ कर दो नहीं तो ये जान दे देगा।
3: अरे कैसे हाँ कर दो दीना नाथ जी।
10: अरे गाँव वालो इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक दो तीन
3: मौसी
10: से कौन शादी करेगा सालो, मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से अरे गाँव वालों सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी, मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
0: कहते कि मौसी से कौन शादी करेगा, मैं तो बसंती के लिए आई हूँ। हाँ इसलिए मरना कैंसल, जीना है मेरे प्यारे जीना है।

0: सर, वो तो पहले ही से अटेंशन।
1: आप जानते जानते जानते कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा।
2: Operatie Back to School. Jij, schoolspullen. We willen geen verrassingen.
1: Ham, Andrezo ke zamane ke jailer hain. Aajkal ke jaileron ki tarah nahi, jo qaidiyon ko sudharne ki fikr mein lage rehte hain. Ham achhi tarah jante hain, tum log kabhi nahi sudhar sakte ho. Are jab hum nahi sudhar sakte to tum kya sudharoge? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये
0: परिंदा हुजूर, कबूतर, कबूतर।
1: निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो।
0: बड़ा अजीब आदमी है,
3: जेलर का जासूस कौन है?
4: मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ,
3: हरिराम नाई।
0: हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो।
5: सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
6: अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
7: काट दिया।
5: सुरंग बनाने को ये कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
6: सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
5: बैंक नंबर 9 के बराबर से।
6: कहीं जेलर को पता ना चल जाए।
5: किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
6: आओ,
0: बस हो गया।
5: साहब।
8: आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
5: साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
8: आओ, जेल में सुरंग?
6: क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग?
5: यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे
1: हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं।
8: हमारी जेल में सुरंग?

0: तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हमारे जेल में पिस्तौल
1: जी,
0: हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों
1: सिपाहियों
0: सिपाहियों
2: सिपाहियों
3: gezond. Kies echt. Kies
4: Zespie.
5: 3, 2, 1.
0: Aur Baki, hamare saath aao.

0: पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
1: चलो कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
2: पहला ऑर्डर कैंसिल। चार

0: अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
1: पहले हाथ से हमें गेट तक छोड़कर आओ।

0: दरवाजा खुलवाओ।
1: जी सर।
2: दरवाजा खोलो।
1: यस सर।
0: ये रही चाबी, ये रहा पिस्ता।
3: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
2: अरे कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी। मगर मैं भागने दूँ तब ना, एक को दीनी है ना पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींच लिए के जाते किधर वा, और कैफ के धो दिए लबाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
3: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
2: हाँ हाँ,
3: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
2: अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि तूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
0: फिर क्या हुआ?
2: अरे फिर हो रहा क्या था, ये तो इस्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे पिन फिन आई तो जाना सुधाई कर दी, दटा दट बहुत मारा बहुत मारा।
0: फिर क्या हुआ?
2: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
0: क्या कहा?
2: क्या कहा? क्या कहा मैंने? हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी डन डन हो रही है।
0: सूरमा भाई।
2: हाँ भाई।
0: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
2: 1000 रुपए?
4: हाँ हाँ, 1000 रुपए।
2: अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
4: अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ, हाँ,
5: हाँ। कुछ डायलॉग आपके लिए पेश किया गया है और आगे में जो समय रहे तो जरूर से और भी डायलॉग आपके लिए यहाँ से हम पेश करेंगे।
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Kijk, ik vertrouwen kan bergen verplaatsen, maar als het breekt, dan verdwijnt niet alleen de kracht, maar ook de blik van wie je werkelijk ziet. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig, maar elke strijd brengt je dichter bij rust. Verhalen en dromen zijn wat voor bestaan, wanneer feiten stof en as zijn en vergeten. Er zijn dagen dat de zon niet opkomt in de lucht, maar in jezelf. En dat is genoeg om de wereld te laten stralen. Soms moet je breken om te ontdekken welke licht er al die tijd in je verborgen zat. Je draagt de stilte niet om te vluchten voor de wereld, maar om de wereld in jezelf te horen spreken. En soms moet je dwalen. Soms moet je dwalen in de stilte om jezelf terug te vinden in het geluid van wie je echt bent. Waardeer het leven zoals het is, waardeer het leven zoals het is. Het zal nooit worden wat je begeert. Sommige dingen worden niet makkelijker. Sommige dingen worden niet makkelijker. Je geest wordt gewoon sterker. En je hoeft niet stil te staan om aandacht te geven aan wat telt. En soms kan de kleinste stap in de goede richting de grootste stap in je leven zijn. Henna.

0: net even anders, gewoon perfect. Extra lucht.
1: Mere liye tum kaun? Kaise bataun main tumhe? Tum dhadkanon ka geet ho, jeevan ka tum sangeet. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मेरे तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मेरे तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं।
2: नाना पाटेकर जी की आवाज़ में उन्हीं के गीत ये गाए हुए हैं। Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Jij moet beslissen wie er in je geest mag wonen. Kijk hij, ki do talwar ik mayan me नहीं रह सकता। Uit de scherven van het verleden, uit de scherven van het verleden, zorgvuldig bijeengerapt, ontstaat een mozaïek van wie ik nu ben. Eerst gebroken, daarna verweerd, toen geheeld en uiteindelijk weer compleet.

प्रतीक्षा प्रतीक्षा उसकी आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है। The slate of

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

चांद से पर्दा कीजिए, अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू जी की आवाज़ में। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, फ्रॉम द मूवी जीत से हम पेश करते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है।

सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वेब रेडियो और वीफी पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 3 मिनट व्यतीत हो चला है 12:03 फुर्तवालफ, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देनहाग शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगियों को, और आखिरी में विजयंती जी का। जी हाँ विजयंती जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है विजयंती जी। सौंदरदाग सेफ मई है, ये यहाँ 7 तारीख मई है, और धीरे धीरे मई भी खिसक रहा है। अभी जून का महीना आएगा, समर शुरू हो जाएगा। बहरहाल समर तो शुरू होगा करीबन 20-22 जून को, लेकिन आप तत्पर हैं और सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और जो लोग चून की मीटर पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के जरिए और डायरेक्सी लीड की तरफ से दोंदरदाग सेफ में, जैसे मैंने कहा, मैं रहूँगा करीबन 3 बजे शाम तक। इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे, और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो आप तार कर सकते हैं, यो भी हो सकता है, तो कुछ बातचीत होगा या तो। तार का नंबर तो आपको मालूम है, 9 सेफ तक गुरुवार है, बृहस्पतिवार।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं फिल्म हाथी मेरे साथी में से निकाल कर। फिल्म तो आप ज़रूर देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे, कौन ये फिल्म नहीं देखा होगा। किशोर कुमार जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए आप सुन रहे हैं और देखते हैं, भैया चांद रघुनाथ भी कार्यक्रम सुन रहा है और खिसला जी, भैया चांद रघुनाथ तो खिसला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ दिन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। चलिए क्या ख्याल है, एवरग्रीन किशोर कुमार जी के बाद ये धमाकेदार गीत हम आपको सुना रहे हैं।

रफ़ी साहब की आवाज़ में तुमने मुझे देखा, फिल्म तीसरी मंजिल में से निकाले हैं। अब यही था वो फिल्म, जी हाँ यही था वो फिल्म जिससे आरडी बर्मन, राहुल देव बर्मन का दौर ब्राक हुआ। वो तेज़ी से निकल पड़ा और फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक हिट्स उन्होंने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के लिए चलाने को रख दिया। और न सिर्फ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के लिए लेकिन बहुत लोगों के लिए। आरडी बर्मन का यही फिल्म दौर बराक था जिससे वो आगे निकल गया। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और एक शख्स और है जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहा है, उसका नाम है रॉय। तो आप सोच रहे हो ये रॉय कौन आदमी है, अभी हम आपको बताएंगे। ये वो शख्स है जो अगर वो नख दिन करता है तो कार्यक्रम नहीं सुन पाता है, लेकिन आज उनका दख दिन से, जी हाँ आज उनका दख दिन से, इसलिए वो कार्यक्रम सुन रहा है। और वो है श्रीमान रॉय, यानी मिस्टर जॉनी नंबर वन। जी हाँ, आपका जाना पहचाना आदमी है, जानी पहचानी आवाज़ है न्यूज़ में या अनेक अनेक कार्यक्रम में। श्रीमान जॉनी नंबर वन कार्यक्रम सुन रहा है। भैया जॉनी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ कि कमिटे में तो आप ही हैं, तो क्या क्योर्सलाखर की तरह आपको धन्यवाद दूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी एक शुभ दिन। और भैया चांद रघुनाथ अल्फानंद रैन के रहने वाला, उनको भी एक शुभ दिन। चलिए ये गीत हम चलाते हैं इस तरह से।

मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलवर है। जी हाँ, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल मिलकर आपको सुनाए फिल्म हीरो में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आप सुनने वाले श्रोताओं, आप अगर जो कई कार्यक्रम सुनते हैं हमारे सब सहयोगी की, मान लिया जाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में, तो हमारे सहयोगियों हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते हैं और हम भी बहुत म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते हैं, क्योंकि अगर म्यूजिक डायरेक्टर आप माने या ना माने, अगर म्यूजिक डायरेक्टर है तो गायक है। एक गायक कुछ भी नहीं है, जी हाँ भूल जाना, एक गायक कुछ भी नहीं है। गायक के पास सिर्फ आवाज़ है। सबसे महान है म्यूजिक डायरेक्टर और गीत को लिखने वाला, गीत को लिखने वाला और म्यूजिक डायरेक्टर। जिस तरह मटेरियल है तिमरमान है जहाँ, और सब सामान है, तीन चीज़ से घर बनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कुछ है। और ये नाम लक्ष्मीकांत प्यारे लाल आपने बहुत बार सुने होंगे। आपको बता दूँ जानकारी के लिए, मेरे पास मेरा लिस्ट नहीं है लेकिन मुझे याद है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने 403 तक फिल्मों में साज दी है। सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है वो है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, 403 तक फिल्मों में इन्होंने साज दी है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के बहुत सारे हिट्स हैं, जी हाँ। चलिए अगला गीत हम तो आपको सुनाने वाले हैं, या ये हाँ ये है आर डी बर्मन के साज पर, मन्ना दे जी का एक क्लासिकल है। आप सोच रहे हो गंगा दिन के काय क्लासिकल चलावे, लेकिन इस गीत का शब्द को सुनिए क्या लिखा गया है, किस तरह लिखे गए हैं। मन्ना दे जी के आवाज़ में ये सेमी क्लासिकल शंकर जय किशन के साज पर हम आपको सुना रहे हैं, सुन लीजिए इस तरह से।

मन्ना दे जी की आवाज़ में छम छम बाजे रे पहेलिया आरती बर्मन के साज पर ये गीत हम आपको सुनाए, शंकर जय किशन के साज पर पेश किया गया फाइन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चून है जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आमस्टरडम से तार किए श्रीमान हीरा प्रसाद, श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्म पत्नी दुलारी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फाइन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सबको भी एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है श्रीमान हीरा प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी दुलारी जी। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगर जब आप चुने तो क्या ख्याल है, आप काम करते रहिए। जी हाँ, किचन में काम करते रहिए यानी रसोई घर में काम करते रहिए। अब ये गीत सुनिए।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: बता दूं? यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

शेख हसीना से यूँ मुलाकात हो गई एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर कुमार जी आपको सुनाएं जैसे मैंने कहा, इस तरह से पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में ये गीत जो निकिता फिर सैफ धक्का है और आरदी बर्मन के साज। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन रहे हैं और आप सबका हृदय से स्वागत है। स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और से साथ दे रही है लता जी। लिखती एन सेवन तक फिल्म पारस में से निकाल कर

तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे लता जी और मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला फिल्म पारस मिशन निकाल कर निगती एन सही पे तक 1971 का ये गीत हमने पेश किए बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है एक लाइफ, एक लाइफ जी हाँ एक लाइफ हम पेश कर रहे हैं अलका याग्निक जी की। जी हाँ ये कांग्रेस का भाव का है, उन दिनों कांग्रेस का भाव था लेकिन आज तो वर्ल्ड फ्रीडम थिएटर है। अलका याग्निक लाइफ हॉलैंड का इस तरह से आ रहा है।

0: हो जाए एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। और ये निकाले ये रूप तेरा मस्ताना यानी टाइटल सॉन्ग है रूप तेरा मस्ताना का, निगति निघने से अस्तक का फिल्म आराधना में से निकाल कर। और इसका म्यूजिक आर डी बर्मन का नहीं है जी नहीं, एस दे बर्मन का यानी सचिन देव बर्मन का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, इस गीत ये गीत को कुछ दिन हुए हमने चलाए थे, और चलाने से पहले हमने कहा क्योंकि उस समय समय नहीं था, हमने कहा कि ये गीत हम आपको एक बार फिर सुनाएंगे और इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। एक चलिए एक फिल्म है जी हाँ, फिल्म शहनाई उन दिनों बन रहा था, तो फिल्म शहनाई की गाने का म्यूज़िक डायरेक्टर है रवि के साज पर फिल्म शहनाई बनाया गया और रवि के एक गीत है और गीत के लिखने वाला है राजेंद्र कृष्ण जी। राजेंद्र कृष्ण जी को फिल्म की गाने के सभी गाने लिखने को मिला, लेकिन लिखते लिखते एक महीना समय था उनके पास, एक महीना समय के रह गया था तो कुछ दिन बचे थे एक दो दिन, लेकिन एक गीत कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं लिख पाया। उसके दिमाग में आता ही नहीं था कि मैं लिखूं क्या, सारी गाने लिखे जा चुके थे फिल्म का और जहाँ तक मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग भी हो चुका था। तो रवि साहब ने तार की राजेंद्र कृष्ण को कि राजेंद्र वो एक गाना बज गया है, वो गीत आप कब लिखोगे। तो राजेंद्र कृष्ण ने कहा साहब मुझे एक दो दिन के टाइम दीजिए। रविशंकर ने कहा सही है क्योंकि एक ही दो दिन बचे हैं और गीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो दो दिन बचे थे और आखिरी दिन राजेंद्र कृष्ण बैठकर ये गीत लिख रहा था अपने पलंग पर अपने बेदी पर। तो गीत लिख रहा था लेकिन है खबर नहीं आई कि लिखूँ तो क्या लिखूँ, कागज बिखरे हुए थे स्लाब कामर में, यहाँ बीगा हुआ था वहाँ बीगा हुआ था। माँ इतने में उनके धर्म पत्नी स्नान करके यानी नहाए के बाद कामर में से निकली। तो आपको शायद याद होगा फैफ्तक यारे के ज़माने में, शस्तक यारे के ज़माने में हारफीन तो था ही नहीं, जी हाँ हारफीन तो नहीं था। तो हमारे नानी आजी है माँ जो थे तो अपने बाल एक बद्दुक से फटकार फटकार वो सुखाते थे, शायद आपको याद होगा ये वाकिया। तो इसी तरह उनके धर्म पत्नी भी अपने बाल सुखा रही थी कमरे में, तो पानी के बूंदे उसके पर्ची पर पड़ गए यानी जिस कागज़ पर वो लिख रहा था गाने उस पर पड़ गया। तो राजेंद्र कृष्ण भड़क उठा कि ये क्या कर रहे हो, जी हाँ ये क्या कर रहे हो। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ। राजेंद्र कृष्ण कहा उस समय अपनी पत्नी से कि आपके बालों के बूंदे मेरे पर्ची पर पड़ रहा है। तो उनके धर्मपत्नी कहा कि अच्छा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं तो यही लिख दो। धर्मपत्नी ने कहा राजेंद्र कृष्ण तो यही लिख दो। तो राजेंद्र कृष्ण भड़क उठा फिर और कहा क्या लिख दूँ, बड़े आए हो लिखने की। लेकिन 10-15 सेकंड बाद राजेंद्र कृष्ण इस बात के बारे में सोचा यही लिख दीजिए। सोचिए धर्मपत्नी ने कहा अगर पानी के बूंद पड़ रहा है मेरे पर्ची पर तो यही लिख दीजिए। तो राजेंद्र कृष्ण के दिमाग में 10-15 सेकंड के बाद बहुत सारे शब्द आए गए और उन्हीं शब्दों के प्रयोग करके उन्होंने ये गीत लिखा। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म शहनाई में से रफ़ी साहब की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण की लिखी हुई गीत रवि के साज पर।
1: न झटको जुल्फ़ से

हाँ जी रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको वो गीत सुनाए हैं जो जुल्फों के झटकार से पानी के छटकने के एक पर्ची पर राजेंद्र कृष्ण के राजेंद्र कृष्ण ने घुड़क कर कहा पत्नी से क्या लिख दूँ बस वही लिख दो। तो यही गाना राजेंद्र कृष्ण के दिमाग में आया, गाना लिखा गया, करीबन एक घंटा नहीं लगा पता चलता है, और एक घंटे के बाद रविशंकर को दे दिया गया और रिकॉर्डिंग हो गया। यही था वो गीत। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: झुकती घटा गाती हवा, ये शानदार गीत महेंद्र कपूर जी और आशा जी आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। इस वक्त मेरे सामने बैठा श्रीमान मीनू भगवान दीन जी, आपका हृदय से स्वागत है मीनू। या और मेरा साथ दे रहा स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मीनू। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, कहाँ गया मेरा बटम।

ये हो नूर आ गया है लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, ये शानदार दिवेत पेश हुआ और हम आपको सुनाएं। शाम का वक्त है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, हमारी जनताओं जो हैं, तो लीजिए हम क्या सुना रहे हैं। माइती मुकेश, हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से है।

0: सपना
1: तुम ही तो हो जिसका सपना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सनाए हैं। फिल्म है निकिता फैफन सेवन तक का रोमियो इन सिक्किम आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो ये दर्शन एन में वर्ल्ड फिल्म थिएटर उस उन दिनों कांग्रेस का भाव था। हम उनका लाइफ आपको सुनाते हैं अलका याग्निक जी की, अलका याग्निक जी की होल लाइफ। चलिए तो ये दर्शन एन का वर्ल्ड फिल्म थिएटर में तुंद्रता कांग्रेस खबाऊ का

रग रग में तू समाने लगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये लाइव कार्यक्रम हम आपको सुनाए हैं। लाइव कांग्रेस का बौखार था उन दिनों और आज तानसेसत वर्ल्ड फिल्म थिएटर द्विदर्शन इनका ये रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए हैं। जबकि आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो चलिए लंबा चौड़ा गीत हम आपको सुनाते हैं। फिल्म हंसते जख्म निगत इंद्रियों से इवन तक 1973 का लता जी और रफ़ी साहब के लंबा चौड़ा गीत सुन लीजिएगा।

0: ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, फिल्म दिल ने फिर याद किया 1966 का एक गीत नहीं कितनी सशस्त्र का हमने पेश की शाम के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं और मैं भी हूँ तो लीजिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत, क्या ख्याल है?
1: प्रेस करें।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए ये गीत चला। शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम एक गीत चलाते, उसके बाद हम पेश करेंगे विज्ञापन। चलो सुनते हैं ये गीत इस तरह से।
1: लेकिन क्या सुनो
2: जो आपकी जी में आए।

सा है भला जिस पे आए प्यार, किसका गुस्सा है भला जिस पे आए प्यार, ऐसा दुश्मन हाय रे।

जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिती सैफ ने सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।

ग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, वो एक लाइफ और है मेरे पास, त्रिदशंत एन का, अलका याग्निक जी का। बस ये प्यारा लाइफ सुनिए, इस तरह से आ रहा है।

यह लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएं फोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में दूरदर्शन इन का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर में। उन दिनों कांग्रेस खबाऊ नाम था। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता, नई गिनती 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकितिन ट्विंस अस्तका ये फिल्म में शंकर जयकिशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है।

रोका कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को, और ये शानदार गीत चला फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी ने कितनी फैफन सस्तकोनी से 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम आओ प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ, इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साथ परनी के 325 तक का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये।

लाल छड़ी मैदान खड़ी फिल्म जानवर नेकी 65 शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए, अब क्या खला ख्याल है अगर जमाएं ये चला दूं आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रवि साहब एस देव बर्मन के साथ पर फिल्म जुअल थीफ्स में से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो जो लोग चुन किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है।

अक्सर इस दुनिया में अलका याग्निक फिल्म धड़कन में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश की हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो नसी नदीम श्रवण के आवाज़ में।

ने दिल ने क्या जादू चलाया,

यह अथक था यह कार्यक्रम जो मैंने पेश की, उस उम्मीद के साथ आप सबको पसंद आया होगा और कार्यक्रम के में भाग भी लिए हैं जो तार किए हैं श्रीमान चांद रघुनाथ जी और जॉनी नमरवान जी, देखा जाए हीरा प्रसाद जोधा दुलारी और बेया विद्रह के रहने वाली, इन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, जी हाँ सौंदक को। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं मिल रहा आपसे सौंदक को और श्रीमान मीनू भगवान दीन जो मेरे सामने बैठा हुआ है उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। रविवार तक और मेरे बाद आप सभी सहयोगी के कार्यक्रम सुनेंगे और विज्ञापन न्यूज़ उससे पहले। तब तक लीजिए एक शुभ दिन।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद हम जाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

और मेरे नसीब में तू है ते नहीं। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को फिर सुनाएंगे, ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और म्यूजिक को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। और यो अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 0226400895।
3: हेलो,
4: अकेले हो? दोस्ती करोगे?

जिसे अपना कहा हमारे यारो और कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रीमेक सॉन्ग की ओर।

0: बाजार ठाणी बाजार
1: और उड़नी उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

होड़ी जो भी हो दोस्तों, आंची अंप को झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: से चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती। और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के, आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ, क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक, आपको सुनाई है लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है आप? सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं? जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे कहीं प्यार ज्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना। मैं तो मुकेश इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में निगती फिर सिफत कौन हिस्सा 74 का ये गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ। बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने, चलो मिल के सुनते हैं।

रफ़ी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। यह शानदार गीत हमने पेश की फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। VVV.5FM.NL पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

तुम हमें अपना

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था जरूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर लिख दी फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए तो लोगों समझे वाह क्या बात है, लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

0: मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है।
1: ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।
2: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
0: भाई राजेंद्र जी, आप तो कुनप के आगे बैठे हुए हैं और शांता जी के लिए बटन दबा दो ताकि वो भी कुछ कह सके।
3: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारे के बिना, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। तो प्यारे आत्माओं, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की सुनने वालों को सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार होवे। आप जैसे सुन रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और साथ में राजेंद्र जी, और यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश फाहन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा के आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। ये आशा उम्मीद है कि आपको ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप हमारे साथ प्रेम और प्यार से साथ में बने रहे। तो संजय जी,
0: अति सुंदर रूप से और जाकर के शांता जी अपना संदेश को हम सबको सुनाए। राजेंद्र जी, आप भी कुछ कह दो तो हम सब आगे बढ़े।
4: भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्यार नहीं।
0: कोई इस मौसम और बैठे हुए सोचते होंगे कैसा और ये मौसम है, कैसा ये दिन है, आज हम सब ये कार्यक्रम लेकर क्या सुनाने वाले हैं। अभी हम सब कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ेंगे, पर जो घर पे बैठे हुए उदास बैठे हुए हैं, तो उनके लिए पहले एक सुंदर सा और गीत को सुनाया जाए।
4: जी जरूर, उन लोगों के लिए आज मौसम तो अच्छा है लेकिन बारिश है, तो उस बारिश भरी मौसम के साथ साथ एक अगर बहुत अच्छा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार भजन सब सुनेंगे तो मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। तो लीजिए, अब सुनिए

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश हर सप्ताह कुछ ना कुछ और संदेश लेकर आपके लिए उपस्थित रहते हैं। हमारा विषय आज का क्या है, अभी उसके ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कार्यक्रम को सुनकर लोग और ये प्रश्न एक होता तो मैं शायद सोचता कि भाई चलो इसे कहीं और प्रोग्राम में और पूछ लेंगे, पर और लोग ये प्रश्न किए। राजेंद्र जी, लोग को जिज्ञासा है, लोग को जिज्ञासा है, जो आपने पिछले सप्ताह बताए कुंभ मेला के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में आप बताएं और हम सब के पास ये प्रश्न हो गए कि लोग ये कहे हमसे कि भाई कम से कम कुछ और उसके बारे में बताइए, और लोग उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हो। राजेंद्र जी, आपसे यही प्रश्न है कि कुछ और हम सबके ये कुंभ मेला के बारे में व्यतीत करें।
1: फाहुन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने कुंभ मेले के बारे में जानने की दोबारा से जिज्ञासा जताई, और इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इसमें कुछ चेंजिंग रहा, तो थोड़ा सा शाही स्नान कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन अभी जो 15 मार्च से लेके और 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा, तो कुंभ मेला की कुछ पौराणिक समय में कुछ बूंदें अमृत की हरिद्वार में गिर गई थी समुद्र मंथन के समय में, इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है, तो इसलिए ज़्यादा करके चर्चा हरिद्वार की रखेंगे। 12 वर्षों में मनाए जाने वाला कुंभ का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार कुंभ मेले के स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है, और पंचांग के अनुसार कुंभ की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि यहाँ कुछ कुंभ के आयोजन के समय करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, और अब कुंभ भारत ही नहीं विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बन चुका है। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी एक आधार साम्य सत्य की खोज, इतने विभिन्न मार्गों से ये कुंभ मेला है। पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा मेला, भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों को भुलाकर सभी प्रकार के लोग और साधु संत बिना किसी निमंत्रण के कुंभ मेला के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कुंभ एक उच्चतम शब्द है। यहाँ देश विदेशों से अनेक लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने भारत को जानना है या समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको समझने के लिए कुंभ सबसे अच्छा माध्यम है। कुछ एक उत्सव है, कुंभ एक उत्सव भी है, और चेतना का विस्तार का कुंभ एक महायज्ञ भी है। जीव और जगत के कल्याण का कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर होता है। पूर्व में गंगा नदी के तट पर प्रयाग में, पश्चिम में छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। कुंभ मेला औसतन 3 वर्ष में एक जगह होता है, जिसमें कि 12 वर्षों में एक जगह होता है। वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। ये सब अखाड़े अपने आप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के सब एक ही स्थान पर पहुंच जाना अपने आप में महानता है। एक ही शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। बस संजय जी, अब कुंभ मेला की जानकारी संक्षिप्त में हमने दी, अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, नीदरलैंड के और सूरीनाम के लोगों को?
0: ये अच्छा संदेश आपने दिए भाई राजेंद्र जी कि कुंभ मेला पर, हमने तो अभी तक कभी कुंभ मेला गया नहीं और ये बात सुन करके बस इच्छा हो रहा है। पर हमारे साथ में बैठे हुए शांता जी, शांता जी जो कि जाकर कुंभ मेला घूम आए हैं, कौन सा साल में गए थे ये कुंभ मेला?
2: 2003 में हम गए
0: थे। तो आप गए तो वहाँ कैसा लगा और कैसा है, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि एक महाउत्सव तथा ऐसा सुंदर रूप से और वो यानी कि एक रखा जाता है?
2: एकदम आप सही कह रहे हैं, राजेंद्र जी जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही है कि कुंभ मेला, वो नाम शब्द कहता है कि मेला है, तो वो वाकई में मेला है।
0: दोस्तों ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आपके लिए रख रहे हैं। और राजेंद्र जी आज का विषय जो कि रखा गया है कि 14 प्रकार के मृत्यु। दोस्तों 14 प्रकार के मृत्यु होता है और कभी आप इसके बारे में शायद सुने भी होंगे, तो आज हम सब उसी के बारे में एक दूसरे से और यानी कि वार्तालाप करेंगे तथा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 14 प्रकार के मृत्यु, तो अब इसके बारे में आप सुनकर डरना नहीं, क्योंकि डरने से हम सब इसके कार्यक्रम नहीं बनाया जाता उसके लिए। पर इसमें जो ऐसा हमारा भाषा है ना, हमारा भाषा इतना सुंदर रूप से है कि अगर जब हम कहीं मोहन के बलाए और मोहन ने और जवाब नहीं दिया कि मोहन कहाँ हो, मोहन पहला बार में जवाब नहीं दिया तो मोहन के दूसरा बार में हम और जोर से चिल्ला कर कहते कि मोहन किधर हो, और जब मोहन दूसरा बार भी कोई जवाब नहीं देता तो हम क्या कहते हैं कि मोहन किधर मर गया। तो मोहन चाहे जहां भी हो, हालांकि मरने के बाद यहां नहीं होता है, पर मोहन जरूर जवाब दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम सब 14 मृत्यु उसके बारे में बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी कुछ और उसके बारे में हम सबके सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि 14 मृत्यु तुल्य, 14 प्रकार के व्यक्ति मृत्यु तुल्य बताए गए हैं, मृत्यु के समान हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य व्यक्ति हैं उनसे, उनके साथ व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे कि कैसा है इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। जब श्री राम और रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है।
0: अंगद ने रावण से बोला, यानी कि जब वो दूत बन करके गए थे ना, तो वहां उनसे कहा कि तू तो मरा हुआ है,
1: तुझे मारने से क्या फायदा, तू तो पहले ही मरा हुआ है। तो रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? तो अंगद बोला, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार का भाता भी लेता है। भाता मतलब
0: जो फिल्म में देखते ना, जो लोहार लोग ऐसे फूकी फूकना मारता है,
1: हाँ। वो भी सांस लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बतलाई, मृत्यु समान जो व्यक्ति होते हैं 14 प्रकार की, तब उन्होंने वो बताई। सो अंगद के द्वारा बताई गई ये 14 मृत्यु के दौर में, ये बातें आज के दौर में भी लागू होती है।
0: तो इसके बारे में हम सब अब जरूर आगे बढ़ेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि 14 प्रकार के यानी कि हम सभी अभी सुनेंगे कि उसमें से कितने हम सब के कोई अस्वभाव होगा, तो शायद हम सब उन बातों को सुन करके और हम सब अपने आप के और यानी कि उसमें कुछ ना कुछ और यानी कि बदल कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को बदलने नहीं चाहते, पर हम जब अपने आप में कोई गलतियां देखे तो जरूर हम उसे खुद को और बदलने की कोशिश करें। दोस्तों ये 14 मृत्यु आप बिल्कुल उसे पे नहीं जाना, क्योंकि जो एक होता है देहांत, जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है हमारा, वायु आकाश अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का शरीर जो काया हमारे बना हुआ है, और इसमें से जब जीव उड़ जाता है तो उसे कहते हैं देहांत। और ये जो हम सब अभी बात करने वाले हैं, तो ये है 14 प्रकार के व्यक्तित्व मृत्यु तुल्य, उसके बारे में बातचीत होगा। राजेंद्र जी जो कि इस समय, और मैं देख रहा हूँ शांता जी तैयार है कुछ कहने के लिए, तो उनका
2: जी जी जी अभी संजय जी ने कहा मृत्यु के बारे में ना, तो मृत्यु के बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कह देती हूँ कि व्हाट इज द डेथ। द डेथ इज एन ओन ओम केयर बार टू स्टैंड वर बाय एन फोर हेन लेवेंड ऑर्गेनिज्म नीट मेयर ग्रोइट एंड गेन स्टॉफवेसलिंग ऑफ अंडर एक्टिव लेवेंसफंक्शन मेयर हैव, दैट इज द डेथ दैट से है।
0: तो ये है देहांत, जिसे हम कहते हैं शांता जी,
2: जी
0: कि जबकि शरीर में से जो शरीर हमारा होता है ना, तो वो जैसे कि एक पिंजरा में एक पंछी होते हैं, और कहावत है कि जब पंछी पिंजरा से उड़ गया। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: मन रे।

0: दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विषय जो कि 14 प्रकार के मृत्यु, मृत्यु तुल्य कहा जाता है। और जैसे कि आप अभी राजेंद्र द्वारा उनसे सुने कि अंगद द्वारा रावण को बतलाई गई ये बात, आज के दौरान में भी यदि किसी अव्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक और दुर्गुण भी आ जाता है तो वे मृत्यु समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भाई रूपचंद जी ने और फोन करके और कहने लगे कि भाई अति सुंदर लग रहा है पर अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है। पहला जो कि काम वश वाला, राजेंद्र जी आप ही सुनाइए कि पहला मृत्यु तुल्य क्या है।
1: पहला मृत्यु तुल्य है जो संसार के भोगों में उलझा हुआ है वह मृत समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है वह मृत समान है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में ही लीन रहता है।
0: यानी कि जो अपने लिए सोच रहे हैं कि अपने लिए जी रहे हैं और अपना मनमाजी कर रहे हैं तो वो भी मृत्यु तुल्य में गणित है। जो दूसरा होता है भाई राजेंद्र जी, उसके बारे में अगर आप कुछ कह सके।
1: हाँ, जो वाम मार्गी है, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले,
0: यानी तेह खस्ता उल्टा, जो कि जो हमें
1: जैसे हमें लोग दक्षिण से चलते हैं उल्टा, तो वो उल्टा चले बाम से
0: अपने मनमानी भी।
1: हाँ, लोग जैसे राइट से चलते तो वो लेफ्ट से चलता है।
0: जैसे सरकार ने हमें कहा कि हमें ये नहीं करना है वो नहीं करना तो वो वही करेंगे।
1: हाँ, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है,
0: यानी कि नियमों को नहीं देखते हैं। हाँ, कोई प्रकार के।
1: हाँ, सकारात्मक एक होती है, सकारात्मक का मतलब अच्छी सोच, एक होती है नकारात्मकता जो उल्टी सोच। नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो वह बाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं।
0: तो शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: ये भी हम घर पे भी देख सकते हैं ना, कोई बच्चे के बोलो कि बच्चे आप स्कूल जाओ या अच्छा काम करो तो
0: नहीं शांता जी, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये संदेश बच्चों के लिए नहीं है, बस हम लोग अपने जो हम लोग के हैं हम सब बड़ों के लिए, क्योंकि ऐसे बात होता है कि इसमें कुछ संदेश होता है और संदेश हम बड़ों बच्चों तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
2: वो तो बात सही
0: तो
2: है पर
0: बच्चे
2: के नहीं है। नहीं,
0: पर ये
2: सभी के लिए है,
0: सभी, हाँ,
2: सभी के लिए है।
0: और खास करके ये हम सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि हम अपना गलती नहीं देख पाते।
2: हाँ, हम तो कभी कभी अपन मनमानी कर लेते हैं,
0: मनमानी करते रहते हैं और अपना गलती नहीं कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम राजेंद्र जी, दूसरा जो कि वाम मार्गी, उसके बारे में जो आप बताए, पर तीसरा क्या है राजेंद्र जी?
1: तीसरा व्यक्ति जो कंजूस है, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत्यु समान ही है।
0: यानी कि कंजूस, हम लोगों ने सुने, देखो सत्संग में एक बार मैंने भी सुना था कि तीन प्रकार के होते, एक चूस, एक कंजूस और तीसरा मक्खी चूस।
1: हाँ तो मक्खी चूस मतलब जो सबसे ज्यादा कंजूस।
0: हाँ, तो ये लोग भी, और यानी कि हम सबको उतना कंजूसी भी नहीं और रखना रहना चाहिए, ताकि हम सब ये जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य बताया गया है उसमें अपना पहचान देखे और हम उससे भी, यानी कि जब हम अपने आप में देखेंगे उसे तो हम अपने आप को बदल भी सकेंगे। और भाई राजेंद्र जी, अगर जब ज्यादा नहीं पूछू तो चौथा क्या है?
1: हाँ, जैसे संजय जी आपने मक्खी चूस का जिक्र किया है तो हम चाहे कि इसको आपको क्लियर कर दे कि मक्खी चूस का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा कंजूस होता है मक्खी चूस,
0: बता दो भाई।
1: जैसे कि आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं,
0: हाँ जी।
1: आप नहीं, जो मक्खी चूस व्यक्ति है वो और दूध में मक्खी गिर जाए, तो वो सोचता है कि दूध में मक्खी गिर गई तो मक्खी को उठा के उठाएगा तो उसमें कुछ दूध लग गया, तो उसको भी चूस लेता है और फिर मक्खी फेंकता है तो उसको मक्खी चूस बोलते हैं।
0: सही बात, सही। शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
2: नहीं, राजेंद्र जो कहा वो सही कहा, उसको
0: सही,
2: उसको मक्खी चूस कहता है।
0: बिल्कुल सही। राजेंद्र जी, बस चौथा और सुना दो ताकि हम सब फिर एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत की ओर बढ़ेंगे।
1: जी, चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है, अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
0: और कहने के मतलब ये है राजेंद्र जी कि गरीब को मदद करना चाहिए, और जो ऐसा दरिद्र होते जो औरों के मेंशन दी अंदर नीच खुनन, यानी कि हॉलैंड में हम सब कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, और वो भी अति दरिद्र में, यानी कि 14 मृत्यु तुल्य में कहा गया है।
1: हाँ, यहाँ पे गरीबी पैसा से नहीं है, गरीबी का यहाँ पे मतलब जो है धन से कम है, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान और साहस से भी है। धन से तो गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन आत्मविश्वास, सम्मान और साहस व्यक्ति का खुद का होना चाहिए।
2: जैसे वार्डेरिंग, अच्छा, ये सब चीजों ना मिली अपने के ना रहे तो वो भी हैगा अति दरिद्रता।
1: जी,
0: अच्छा संदेश जो हम सबको और राजेंद्र जी और शांता जी सुनाए, तो हम सब एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे। भाई राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है?
1: गीत का बोल है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।

भजन में भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।

0: बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राजेंद्र जी, अति अर्थ भरी और सुंदर रूप से ये अनूप जलोता जी हम सबको गीत को और सुनाए। अभी आपने हम सब ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में बता रहे थे और चार तलक आप बता चुके हैं, पर हमें जिज्ञासा है और सुनने के, राजेंद्र जी, तो पांचवा क्या है, पांचवा मृत्यु तुल्य क्या है?
1: जी जरूर, आपका जिज्ञासा पूरा होगा। पांचवा मृत्यु तुल्य है विमूढ़, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है।
0: मूर्ख, जो ची हम लोग बोले सन्नाम में दोंग
1: दन,
0: दोंग
1: दुम,
0: अभी आप सीख गए।
1: हाँ, जो व्यक्ति दुम रहे,
0: दम,
1: दम, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो,
0: हाँ जी,
1: जो खुद निर्णय न ले सके,
0: यानी कि बस ले सिंह ना ले ही पाता, नहीं ले पाते
1: जी, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने की किसी और पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवन होते हुए भी मृत समान ही है। ऐसा व्यक्ति जिंदा होते हुए भी, जीते होते हुए भी मरा ही हुआ है, समझो।
0: ओ हो, बड़ा गंभीर बात बोल दिया आपने। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: जी
2: हाँ, कहते हैं कि मैं से दी खेन सेल्फ रेस्पेक्टिव ऑफ दी ओक खेन सेल्फ कैनसिव एंड दी खेन एक बसलेसिंग का नेम दिस एंड ओक गलेक आन आन दो ये पर्सन।
0: अब लेटरलक शांता जी ऐसा नहीं कहने क्योंकि बिल्कुल दो ये पर्सन दोस्तों,
2: बट सो इज इट आज जस्ट खेन सेल्फ बसलेसिंग का नेम आल्टेड अफहंकलिक मुझ सेन फान आंदर। Dan kan je ook niet vooruit gaan. Dan blijf je gewoon op dezelfde plek zitten. Dan moet altijd iemand anders komen om jou naar voren te trekken.
0: Dosto, ye ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम कोई प्रकार से और प्रकाश डाल सके। ये कहावत तो हम जानते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाते है जब परखने वाले नहीं समझाने वाले मिल जाते हैं। तो इस बात पे हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमें हमारे संतों ने बहुत सुंदर रूप से संदेश हम सबको दिए हैं कि ये 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो है, 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है, हमें उसमें अपने आप को पहचाने, और अगर कुछ उसमें जो हम अपने आप को पहचानते हैं तो क्या शायद हम उसे अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ज्योति का प्रकाश के ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को बदलना है, पर कोई अपना गलती अपने में देख सके तो वो हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, हम जो राजेंद्र जी से पूछ रहा हूँ कि भाई राजेंद्र जी, पांचवा तो आपने बड़ा गंभीरता वाला बताया कि जो मूर्ख होता है, जो अपने पसले सिंह नहीं ले पाते, वो मृत्यु तुल्य के समान है, पर छठवा क्या है?
1: छठवा है संजय जी अजसी। अजसी यानी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है, जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है।
0: बस जो कोई प्रकार के सम्मान नहीं होता है, यानी कि जो वर्देरिंग नहीं पाता। शांता जी, आपके कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, पर हमारे पास एक टेलीफोन आया था राजेंद्र जी, और टेलीफोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुशी नहीं हूँ, मेरा भाई बंधु भी मुझसे जलते हैं ना, मुझे और यानी कि कोई प्रकार के सम्मान नहीं देते हैं। तो भाई जी, आपके लिए बस यहाँ भी कुछ लिखा हमारा, क्योंकि हमारा विषय रखने वाले हैं, हम सबके लिए विषय को बना करके और देते हैं, और ये विषय जो कि हमारे संत मुनियों को लिखा हुए है और वो हम सबके लिए खोज खोज करके रखते हैं, इस पे बताया गया है कि भाई केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है, केवल रक्त यानी कि खून के संबंध से अपना नहीं होता है, प्रेम सहयोग विश्वास श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कहते हैं फर्त्रावन को, प्रति आभार सुरक्षा सुहानुभूति और सम्मान ये सारे ऐसा भाव है जो परायों को भी अपना बनाते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जैसे कि आपने छेटवा को सुनाए यानी कि द सस्त मृत्यु तुल्य को और सुनाए, तो क्यों ना हमें सुईफंद को भी सुना दे।
1: जी जरूर, सेवंदक है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी जीवन का आनंद से वंचित रह जाता है।
0: अरे ये तो बड़ा समस्या हुआ, ये तो बड़ा समस्या हुआ, क्योंकि जीवित रहते हुए लोग जो ऐसे सोचते हैं कि अरे आज के दिन तो बिता, कैसे बीतेगा कल का दिन, परसों क्या होगा, और ऐसे जीते हैं। ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा वृतांत तो हम ढेर जानते हैं। भाई राजेंद्र जी, क्यों ना हम इस पे अगर आप जो अवसर दे तो हम कुछ इसके बारे में कहना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि पैनल के पीछे तो आप बैठे हुए हैं और आप ही के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ राजेंद्र जी
1: जी
0: कि देव इंद्र ने एक और सभा को रचा
1: जी।
0: सभा को रचा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, यानी कि सभी को नौता भेजा गया, और वहां पर सभी देवताओं जो कि देव्य रूप धारण कर करके
1: जी।
0: और वहां उपस्थित हो गए सभी पहाड़ों जो भी देव क्वीय रूप धारण कर करके और वहां उपस्थित हुए, सभी श्रेष्ठ नदियों भी देव्य रूप धारण के वहां उपस्थित हुए, सभी युगों भी वहां उपस्थित हुआ। सभी जब उपस्थित हो गया तो कौन आता है सबसे देर से वहां?
1: गणेश जी। कौन आता है बताइए संजय जी।
0: अब देखो राजेंद्र जी को भी नहीं पता था इस बात का। देखो वो वृतांत ऐसे यानी कि बताया गया कि वहां सबसे देर से कौन युग चल रहा है इस समय?
1: कलयुग।
0: और कलयुग आता है तो सबसे देर से आता है, और सबसे देर से वो और सभा में आकर के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। सभी देवताओं ने एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, कहने लगे कि समय इन्हीं का चल रहा है और आया भी तो देर से, और देर से आकर के जाकर के सबसे पाछे बैठे। तो सभी एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए जाते हैं कलयुग के पास, और कलयुग से ये प्रश्न रखते हैं कि भाई समय तो आपका चल रहा है और आप आए भी तो, और आकर के सबसे पीछे क्यों बैठे? तो कलयुग कहते कि मेरा तो दो बात है, मैं जो अपने यानी कि जो प्रेमी होते हैं हमारा, जो बड़ा आराम से सोते हैं तो उन्हें चादर को ओढ़ाने चले जाते हूं। तो इस बात को देवताओं समझा नहीं, तो देवताओं के प्रश्न करने से कलयुग कहते हैं कि देखो जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए ना
1: जी,
0: तो उनका एकदम मंगलमय, पर जो सूर्य उदय से पहले उठ जाए तो उनका भी
1: मंगलमय,
0: पर जो सूर्य उदय के बाद में उठने को कोशिश करते हैं उनके तो मैं खुद चादर ओढ़ाने को चले जाते हूं ताकि वो आराम से सोए, ताकि हाँ सूर्य उदय हो जावे तो उठे। तो उसमें देवताओं ने प्रश्न रखे कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं तो जरूर हमारा चादर को प्राप्त करते हैं, पर हमारे चादर में क्या बसा हुआ है? रोग। तो यही रोग हमें और बाग आगे में जाकर के सताते हैं। रोग कहते बीमारी आती ना
1: जी।
0: तो राजेंद्र जी, हमें ऐसा जरूर इस बात पे सोचना चाहिए कि जो सदा रोगवश होते हैं तो कम से कम अपने आप में तो सुधार लावे। सूर्य अस्त ऐसा ना हो कि हो जाए तब आप उठो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, अपना कार्य को करो और तब आपका दिवस भी मंगलमय होंगे। भाई राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप रखने वाले हो?
1: हाँ, जैसा कि संजय जी आपने बताया सूर्योदय वाली बात, थोड़ा हम इस पे आधा मिनट लेंगे।
0: चलो एक मिनट ले लेंगे।
1: सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उसके बाद स्नान करके अपना जो पद्धति है पूजा पाठ की वो करें, जिसका जैसा है वो उसे करें, लेकिन इसके बाद थोड़ा योग।
0: योग, हाँ सही बात,
1: योग आसन जरूर करें। और योग आसन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो योग आसन, प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो योग आसन और प्राणायाम तो जरूर करें। ध्यान जब समय मिले जब कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय में योग और प्राणायाम करने से रोग मुक्त हो सकता है,
0: रोग मुक्त हो सकता है। तो जो सातवां कहावत है कि 14 और मृत्यु तुल्य में से सातवां जो है, जो आप अपने आप के बचाने के लिए आप जो कार्य करें, जो हमारे संतों ने संदेश दिए, तो आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। शांता जी भी कुछ कहने वाले थे राजेंद्र जी, तभी उसके बाद में फिर गीत को रखना।
2: जी, सुबह जाकर स्नान के बाद अपन कार्य जो है पूजा पाठ करने के बाद और सूर्य नमस्कार करें भी।
0: सूर्य नमस्कार
2: तो उसमें सब सब के सब योग उधलों में भी हो जाए, सब रकम के बवेखिंग में हो जाए, अति हाँ, सुंदर।
1: सूर्य नमस्कार कोई कर सके तो बहुत ही उत्तम, लेकिन जो लोग की उम्र थोड़ा ज़्यादा है या पहली बार कर रहे हैं योग, वो सम योग करें या सूक्ष्म योग करें धीरे धीरे।
2: सूक्ष्म योग क्या है?
1: सूक्ष्म योग मतलब छोटे छोटे योग जो हल्के रूप में है।
2: जी,
1: हाथ पैर को हिलाना, कंधों को हिलाना, कमर को हिलाना और ताड़ासन करना, पूरे शरीर को खींच देना, ये सब सूक्ष्म योग में आता है।
2: जिमनास्टिक
0: जी सुबह सुबह करना चाहिए। भाई राजेंद्र जी, आप अपना सुंदर सा और जो गीत को रखने वाले है रख सकते हैं।
1: जी, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, गीत के जो बोल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, तो अब सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा।

0: Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Bhai Rajinder ji, hum sab aur 8wa ke aur aa chuke hain. चलो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो बताया गया है और 8वां की ओर हम बढ़ चुके हैं, तो भाई राजेंद्र जी उसके बारे में तो कुछ बताइए
4: जी। अभी जो 8वां के बारे में संजय जी ने जानना चाहा वो है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है, शरीर और बुद्धि दोनों असमंजस हो जाते हैं।
3: ओ, जब उतना लिफ्टाइट आ जाए यानी कि जा अफंकलक हो गया लो ना।
4: हाँ, असक्षम मतलब सक्षमता नहीं होती है, वो हो जाता है। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके।
3: अच्छा, बड़ा ये बात तो बड़ा ये थोड़ा आश्चर्य की बात हो जाए। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
5: इसके बारे में मेरी सासू जी, सासू माँ हरदम ये बात कहती थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। वो हर साथ ये बात ये कहती थी कि ये जैसे करी वे वैसे ही पाई। तो बहुत अच्छा और ज्ञान भरी के बात भी है जी। बहुत बड़का संदेश है इसमें,
3: एक
5: बहुत
3: संदेश जो यहाँ मेरा व्हाट्सएप बरख पे बबली जी भेजे हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। ये संदेश जो कि बबली जी हमें भेजे, और भाई गहार लक्ष्मी प्रसाद जो आमस्टरडाम से ये कार्यक्रम को सुनते हुए बोले कि भाई ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो भाई धन्यवाद आपका और सुनते रहना, बस यही कहना चाहूंगा हम। भाई राजेंद्र जी
4: जी,
3: 8वां के बाद तो 9 जरूर होना चाहिए।
4: हाँ, 9 तो जरूर होना चाहिए। 9वां है सतत क्रोधी।
3: सतत क्रोधी
4: जी, 24 घंटा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होती है।
3: यानी कि जो व्यक्ति 24 घंटा क्रोध में रहता है और हर एक छोटा छोटा बात पे और बस अपना गुस्सा को दिखाने लगते हैं, तो ये भी 14 और मृत्यु तुल्यों में भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम जो ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में और बातचीत कर रहे हैं, और हमारे भाई राजेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित है, हम सबके अपना संदेश जो दे रहे हैं, और शांता जी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो सतत क्रोधी

0: ऐसा व्यक्ति से तो दूर रहना अच्छा है।
1: आप कभी क्रोध नहीं होते?
0: मेरा स्वभाव नहीं क्रोध होने के लिए।
2: लेकिन कभी किसी के कारण क्रोध करना पड़े तो आप क्या करते हैं?
0: मैं क्रोध नहीं करती हूँ, मैं शांत से
2: तो?
0: नहीं करती हूँ, नहीं आता क्रोध मुझे, नहीं आता तो मैं शांत से उसको देखकर समझ बूझ कर अपने आप में आ जाती हूँ।
1: यानी कि क्रोध में, क्रोध में
0: जी शांत भाव।
2: हाँ, इसलिए कि आपका नाम शांता है तो इसलिए आप शांत हो सकेगा। लेकिन अभी अगर कभी किसी से क्रोध करना भी पड़े तो बाहर से करना, अंदर से नहीं
1: ना?
2: अच्छा। बाहर रूप से।
1: चलो दसवा और रूप बता दो भाई राजेंद्र जी की। दसवा रूप जो
2: अदखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने की धन प्राप्त करना चाहिए। मेहनत और कमाई का जो धन होता है वही प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है।
1: राजेंद्र जी
2: जी,
1: यानी कि इस बात से आप ये कहना चाहेंगे कि जो पाप व्यक्ति पाप कर्मों से और कमा करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं तो परिवार वाला भी उसमें दोषी बन जाते हैं।
2: जी,
1: तो ये तो भी ठीक चीज नहीं। दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम हम सब चला रहे हैं और आज का और यानी कि विषय 14 मृत्यु तुल्य है। 14 मृत्यु तुल्य और इसमें से कितने हम सब उसमें सुन करके और उसमें अपने आप को देखते हैं कि 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है। क्योंकि कहावत है कि ये जो जिंदगी, ये जीना कितना सुंदर रूप है। हम जब ये जीने का, ये जीवन के जीने का तरीका सीख ले तो हम सबके जीवन कितना आराम ही आराम होगा। हमें जो अभी आपने और सुनाए जो कि दसवां था ना राजेंद्र जी?
2: जी, दसवां।
1: तो दसवां में से अब हमें 11वां के और छलांग लगाना है।
2: जी जरूर। 11वां है तनु पोषक। तनु पोषक यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो तो ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हो कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है।
1: यानी कि जो लोग खाली सिर्फ अपने के कबल है। ओके शांता जी,
0: एक हो विस्त।
1: हाँ, जो स्वार्थी होते हैं,
2: स्वार्थी,
1: तो वो भी मृत्यु का समान होते हैं। तो भाई, हमें इस बात से, इस संदेश से जरूर कुछ सोचे कि क्या हम, हमारे में कितना स्वार्थी तथा कितना जो एकोविश्म है उस पे और कुछ प्रकार से प्रभाव हो सके, ताकि हम उससे भी और यानी कि पहचाने अपने आप में। क्योंकि ऐसा हुआ ना राजेंद्र जी, एक मेरा मित्र था और वो कह रहे थे कि हमसे एक वृतांत को सुना रहे थे। तो वृतांत जो था, ऐसा हुआ कि उसका दद्दू, हम लोग कहते आजा ना,
2: आजा,
1: तो उन्होंने कहा कि मेरा दद्दू सभी के कमरे में एक दर्पण लगाए हुए थे, पर सभी के कमरे में एक छोटा छोटा सा दर्पण, यानी कि दर्पण कहते हैं शीशा,
0: आईना।
1: तो सभी के कमरे में छोटे छोटे था और वो दर्पण, पर उन्होंने अपने कमरे में बड़ा सा और दर्पण रखे थे, यानी कि जिसे अपना पूरा शरीर को और देख सकते थे। वो जो वृतांत था कि उन्होंने कहा कि अपने कमरे में बड़ा सा दर्पण रखे, और ये बड़ा आसान होता है किसी और के ऊपर उंगली उठाना, पर कभी अपने आप से ये प्रश्न किए हैं कि क्या जो उंगली उठाए क्या सारा गलती उसी के रहा कि या कुछ गलती मेरा था। तो कहने के तात्पर्य यह है कि जो अपने कमरे में जो उनका दद्दू ने बड़ा सा दर्पण रखे थे, तो वो रोज आकर सबसे पहले वो दर्पण के सामने खड़ा होकर आंख में आंख डाल करके ये प्रश्न किया करते थे कि जो आज किया क्या सब ठीक हुआ
2: जी।
1: कभी गलती से हमसे कोई कार्य ना हो गया कि ताकि औरों को दुख पहुंचे हुए। शांता जी, इसके बारे में आपका कुछ कहना है?
0: जी हाँ, यही कि कुछ कहने से पहले सोच लो कि क्या कहना है, कि ऐसा ना हो कि ऐसे कुछ शब्द निकल जाए और बाद में पछताना पड़े तो बहुत दुख होगा।
1: ऐसा भी होता है कि कभी कभी गुस्सा में लोग ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं तो ना कि सिर्फ दुख पहुंचता है पर कभी रास्ता ही लौटने का भी गुप्त हो जाता है। तो भाई राजेंद्र जी, आगे बारहवा की ओर हम बढ़े।
2: बारहवा की ओर बढ़ते हैं। बारहवा है संजय जी, निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। निंदा करना मतलब पीठ पीछे बुराई करना किसी की।
1: अरे राजेंद्र जी, निंदक कौन नहीं आजकल? जिसके टेलीफोन में व्हाट्सएप है तो वो निंदक नहीं है? जहां कोई के बरिख और यानी कि कोई संदेश सुन लेते हैं
2: जी,
1: तो बस बुराई जो होता है तो एक लोग के पास नहीं भेजते हैं, लाखों के पास।
2: तो मरे हुए समान है, इसलिए हमको निंदक नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, ज्ञान भरी चीज भेजनी चाहिए, निंदा वाली नहीं। जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है, जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बुरा बात है। अब जो लोग बेचारन सोचे कि कोई की निंद्रा सुनी और व्हाट्सएप से एकरे अरे दुई गो के तीन गो के औरों के पास खूब भेजे हैं, तो वो सब भी इसमें शामिल हो गए। भाई जोर से नहीं कहूंगा, कभी काल के हम भी तो कुछ ना कुछ भेज देते आगे, पर इस बात को सुनकर अपना गलती और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए और तैयार करते हैं। आप उसमें से कुछ ना कुछ संदेश जो हम सब के लिए खोज कर रखा जाता है, उसमें से हम सब अपने आप तथा औरों के साथ बांटते हैं और कुछ ना कुछ संदेश उससे हम अपने लिए कोई प्रकार से लाभदायक हो। हमारे साथ जो देने वाले हैं भाई राजेंद्र जी, वो तो तैयार हो गया है तेरहवा और मृत्यु तुल्य के ओर बढ़ने के लिए। पर शांता जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे शांता जी आप?
0: जी जी कहूंगा। ये समय क्या बात है ना, समय तेजी से समय कहते हैं। The tijd is gratis, maar onbetaalbaar. Tijd, je kan het niet eigenen, maar wel gebruiken. Tijd, je kan het niet bewaren, maar wel goed besteden. Tijd, zodra het voorbij is, komt het nooit meer terug. Van Hindustani Radio ki sunne walo, aap sun rahe hai ki waqt कितना बलवान है, कितना महान है, वक्त के कदर करना चाहिए।
1: भाई राजेंद्र जी आगे।
2: आगे है तेरवा है परमात्म विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही माना जाता है।
1: जो भगवान में नहीं विश्वास करे
2: जी,
1: जो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है
2: जी,
1: तो यही तो है मुश्किल। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ हम आए हैं तो हम ही सब कुछ है। तो भाई इसमें भी वृतांत बताया गया है कि 14 मृत्यु तुल्य में उसके बारे में भी। भाई राजेंद्र जी आगे
2: चौदवा
1: चतुर्दशी, हाँ उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, जो चौदवा है वो है श्रुति। श्रुति यानी संत विरोधी,
1: जो संतों से विरोध करते हैं।
2: हाँ, जो संत ग्रंथ, संतों से, ग्रंथों से, पुराणों से इनका सब विरोध करते हैं, वह भी मृत समान ही होते हैं। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं 120 की स्पीड पे और बीच में अचानक डिवाइडर आ जाए, वो ब्रेकर आ जाए तो एकदम रोकना पड़ता है, तो ऐसे ही ये लोगों के अनुसार ब्रेकर का काम करते हैं।
1: यानी कि जो हमारे संतों और ग्रंथों के यानी कि निंदक होते हैं ना
2: जी,
1: और उनके उन्हें मानते भी नहीं, तो
2: मानते
1: ये
2: भी नहीं और मानने भी नहीं देते दूसरों को,
1: यानी कि उस पे अपना वाला सुनाने के लिए और औरों को मानने से रोकते
2: जी।
1: तो दोस्तों ये था 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में, जो हम सब के साथ भाई राजेंद्र जी और यानी कि अपने संदेश को बांटे। हम सब एक सुंदर सा नगमा के ओर बढ़ेंगे, सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे।
2: सुंदर सा जो गीत है उसके बोल हैं

0: राजेंद्र जी अति सुंदर गीत को रखे और जिससे हमारे भाई रूपचंद जी और बोल रहे थे कि भाई क्या कह रहे थे राजेंद्र जी?
1: हाँ, रूपचंद जी कह रहे थे कि बहुत मोए लगा गाना हमको, जो 14 प्रकार की मृत्यु है वो बहुत विशाल लगा।
0: तो यानी कि भाई रूपचंद जी समझ
1: गए, बहुत गंभीर विषय रहा बता रहे थे।
0: तो भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि जब अपना दिन शुरू करते हैं, जब अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी जीभ में 3 शब्द रखे, कोशिश, सच, विश्वास। यानी कि ये 3 शब्दों अपने जीभ से रखे कि आज मैं कोशिश करने वाला हूं, आज मैं सच कहने वाला हूं, आज विश्वास के लिए। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, और विश्वास भगवान में रखे, तब सफलता आपके पैरों को पर
1: चूमेगी।
0: इसी बात से भाई राजेंद्र जी की हम सब 14 प्रकार के मृत्यु हम सब रखे कि 14 प्रकार के मृत्यु जो हमारे संतों मुनियों ने हम सब के लिए विचार करके और रखे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत हुआ। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई कहीं और बैठे होंगे, कोई अपने घर से बैठे हैं, कोई कार में सुन रहे हैं, कोई अपने मोबाइल से सुन रहे हैं। तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो हर समय आपके लिए 2400 घंटा आपके साथ रहते हैं। इसमें जरूर ये कहना चाहूँगा कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है। जब कोई काम कोई कार्य करे तो ये मत सोचना कि हाँ कोई प्रकार से चित्रगुप्त जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य साक्षी होते हैं, चंद्रमा साक्षी होते हैं, अंधेरा भी साक्षी होता है
1: जी।
0: तो हम ऐसा कार्य करें कि हमें उसे डरना नहीं चाहिए। और ये भी कहावत है कि और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। इसी दोनों अंतर को जब हम समझ जाए तो हमारे जो ज्योति का प्रकाश, जिसका हम सब ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा से भी प्रकाश हो जाए। भाई राजेंद्र जी, आप कौन सा गीत को रखे हुए हैं?
1: जो गीत रखे हैं वो है बच्चों का,
0: पर अभी उस ओर बढ़ना नहीं
1: जी,
0: क्योंकि शांता जी तैयार हो गया है कुछ कहने को।
1: जरूर जरूर शांता जी कुछ कहेंगे।
2: हाँ, यही कहूँगा, ये जो संजय जी ने कहा ना कि कोई देख रहा है, कुछ भी करो कोई भी देख रहा है, तो सबसे पहले कोई देख रहा है वो अपना आत्मा है जो देख रहा है, और उस आत्मा भी धिक्कारता है कि अगर तू कुछ बुरा काम कार्य करेगा तो वो भी धिक्कारेगा, और जो कर भी लोगे ना तो वो आपका आत्मा में शांति भी नहीं आएगा, वो हर बार आपको कोसते रहेगा, सोचते रहेगा कि क्यों किया।
0: तो भाई राजेंद्र जी
1: जी,
0: ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है, हमारे बच्चों के लिए आपने क्या रखे?
1: बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रखे हैं, बोलो राम अजराम।
3: दादी दादी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जा तो मुझे डर लगता है।
4: स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है।
3: नहीं, मुझे बहुत डर लगता है।
4: इसमें डरने की क्या बात है बेटा, अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना।
3: मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है।
4: अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो आएगा।

0: जन्मदिन की बधाई हो मास्टर जी।
1: पांडे, मास्टर जी ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: ये बेर कहाँ से लाए? ये तो
0: मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया है।

0: wil.
1: Geef het een nieuw leven op Vinted. Zo.
2: प्यारे सुनने वालों, यहाँ से श्रवण की हमने किशोर दा के गाए हुए गीत, फिल्म का नाम नौटंकी बॉय, और आपसे बता दे किशोर दा जी खुद इस फिल्म में ये गीत को एक्ट की है। आप उसमें देखेंगे किशोर दा जी को, अगर चाहे तो देखना। फिल्म का नाम नौटंकी बॉय। इस बार हम सुनेंगे पैगाम, बदला सारा जमाना।
3: सुनो सुनो हे पंडित लोगों,

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय। चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बना, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा बाजी है हाय, मौका मिले तो भगवान पेट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान पेट खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जू

महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में श्रवण की है हमें। हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको स्वागत है एक बार फिर

मत जाओ मेरे दोस्तों, इस गीत में कितनी पेस्तर है ये ना, वो लड़का लड़की को कहते हैं कि आपके नाक मोटी है। हाँ, ऐसा गीत भी आपको सुनने को मिलता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। महमूद के जा

मैं मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ।

0: जी की कसम, दादा जी की कसम, काका जी की कसम, हमारे पदम जी की कसम,
1: सबके कसमें इसमें आप सुनते हैं कि दादा की कसम, मामा की कसम।
0: मर न चला हूं।

मत मोरो भैया मौत एक रोज आएगा। मोहब्बत में ऐसा ही होता है कि दिल जो दुखता है और जो हमारे सामने वाले जिसे आप चाहते हैं वो नहीं मानते ना, तो आपको ऐसा लगता है पर नहीं, क्योंकि ऐसा मेर है से दांकेर के दस मैंने लिखो मत मरो, जिंदगी बहुत ही सीने हसीने से जियो।

फिल्म का नाम CID, फिल्म का नाम CID, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में यहाँ से मिलकर और आपके लिए हम श्रवण की है और आपके लिए पेश किया गया है। नेहन 3605 तक में ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। और कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर को ठीक रहना ये आवश्यक है। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए। और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस समय कोई समस्या जन्म लेता है, उसी समय उसी का हल समाधान भी जन्म लेता है। Met andere woorden, elk probleem heeft een oplossing.

कारण हो, कोई भी कारण हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो।

जोर से मत बोलो, तकलीफ सिर्फ आपको होगा, दुख भी आपको ही होगा। आवाज से आवाज नहीं मिल, आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुपकी, चुपकी से बल्कि चुपकी से मिटती है। मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। मन शांत रखो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरी बात मान लो, ये सही है। इस बार आपके लिए चुनकर और लाई हूँ लता जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज में कि हमने देखे सपने।

0: अवश्य हमने जो देखे सपने वो सच हो गए। परिवार छोड़कर कितने भी दोस्त बना लो, मगर याद रखना भाई, मगर याद रखना भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि दुख में भाई से ज्यादा कोई समझदार नहीं होता है। जिस घर के भाइयों में एकता होता है, उस घर के तरक्की भी सबसे ज्यादा होती है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer

पेश किया गया है मेम साहब फिल्म का नाम मेम साहब फिल्म का नाम निगमदीन ए नसीफ तख्त में ये पिक्चराइज किया गया है। अपने दिमाग से बाहर आए, अपने दिमाग से बाहर आए और जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाए, उसे सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाए। अपने दिमाग से बाहर आओ और जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाओ। इस बार आपके लिए है किशोर दास जी की आवाज में कि आदमी जो कहता है, और आगे जरूर से आप इस गीत के जरिए से सुने कि और क्या कहते हैं।

बात तो सही है कि आदमी जो कहता है सुनता है वो सदा ही पीछा करता रहता है। उधारी का पैसा जब तक आप नहीं मांगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने जाएंगे तो उस दिन से, सुनिए जी, उस दिन से मांगने वाला आपको उधारी का पैसा जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने जाएंगे उस दिन से सामने वाले आपको बुरा समझने लगेगा। उनमें से तो कुछ दुश्मन बन जाएगा, कुछ बातचीत करना बंद कर देंगे और कुछ बदनामी करने लग जाएंगे। और तो कुछ लोग जो है जिसके आप पैसे दिए हो और आप उन्हीं पैसा अपने पैसा वापस मांगने जाओगे तो हमने बताया, और उसमें से भी कुछ आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं ऐसा, बहुत कम लोग ही ऐसा होता है जो इज्जत से समय पर पैसा लौटा देते हैं। बात ऐसे है कि जब उन्हें उधारी देंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब वापस मांगने जाओगे तो वो लोग हंगामा खड़ा कर देंगे और पूरी दुनिया जान जाएगी। ये भी कुछ जाने पहचाने शब्द है ना।

दान करने से ज्यादा ज्यादा पुण्य उधारी चुकाने में मिलता है। आप उधार लिए हैं तो उसे पहले चुका दो, तो फिर जो आप दान करोगे तो कई पुण्य मिलेगा। उधारी का पैसा रोक कर दान धर्म करना एक तरह का पाप होता है, इसलिए सबसे पहले उसका पैसा लौटाए जिसने आपको अच्छे इंसान समझकर आपके बुरे वक्त में आर्थिक

आपने सुने, ये पब्लिक है, अवश्य अवश्य ये पब्लिक है। परिश्रम का फल, परिश्रम का फल, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, देर से ही सही लेकिन फल जरूर।

फिल्म लवारिस से निकाल दिया गया है। और आप तो जानते हैं फिल्म लवारिस में सीना तमन और अमिताभ बच्चन जी अपना कला दिखाए हैं। किशोर दास जी के आवाज में पेश किया गया आपके लिए आपिका फाउन हिंदुस्तान।

उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस आम में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी के सेवा किए थे श्याम पूरन जी, यानी भाई श्याम पूरन जी, और उन्होंने मुझे देवी कहा। मैं तो कोई देवी वेवी नहीं हूँ। सुनने वालों, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

दमाइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे।

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर, शादी के उपलक्ष्य पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र मेरे हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

आप सुन रहे थे हम सफ़र मेरे हम सफ़र पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। मोहब्बत क्या होता है? मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा।

0: अभी आप सुन रहे थे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी भीगी पलके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये गीत एक आखिरी गीत यानी एक अंतिम गीत था स्मिता पटेल और राज बब्बर का, और ये गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। निकाह है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बीते हुए लम्हों की कसक।
1: भी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी निकाह से हमने ये गीत पेश किए हैं। मोहब्बत इबादत अभी आपने सुने हैं और एक फिल्म का नाम है मोहब्बत के दुश्मन। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ जानू मेरी जान भी तू है।